सुप्रभात। एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। आज दिन सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 4, तदनुसार 25 मई सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरखेल। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at 250th Independence Day celebration of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jaishankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why their counter-terrorism cooperation is so important. He said that both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices. Mentioning the visit of U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio, Dr. Jaishankar said this visit highlights the significance of India-U.S. ties in contemporary times. He added that a year ago, Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump set out a pathway for the further development of both nations' enduring partnership. U.S. President Donald Trump dialed Secretary of State Marco Rubio during an event celebrating America's 250 years of independence at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. U.S. President described Prime Minister Narendra Modi as a friend and stated that ties between the two nations had never been closer. He even called himself a big fan of PM Modi. Mr. Trump said India can count on him 100%.
5: I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country.
4: U.S. President's remarks came amid Mr. Rubio's four-day visit to India. Mr. Rubio met Prime Minister Modi on Saturday, followed by his meetings with External Affairs Minister S. Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval yesterday. President Draupadi Murmu will present 66 Padma Awards at the first civil investiture ceremony for 2026 to be held in Rashtrapati Bhavan today. During the ceremony, to be attended by Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, among others, the President will confer 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri Awards. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Bhushan and 113 Shri Padma Shri Awards. The remaining Padma Awardees will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. In West Bengal, BJP candidate Debangshu Panda has won the Falta Assembly seat by a margin of over 1 lakh votes. Mr. Panda defeated his nearest rival and CPIM's candidate Shambhunath Kurme, who secured with 40,645 votes. The re-poll in Falta was held in

कार्यक्रम खेती की बातें सुनने वाले आप सभी किसान भाई बहनों को कृष्णा कावेरी का प्यार भरा जोहार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे फसलों में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से करें। किसान भाई बहनों, संतुलित उर्वरक का अर्थ है मिट्टी परीक्षण के आधार पर फसल की आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सहित सूक्ष्म पोषक तत्वों का सही मात्रा व सही अनुपात में उपयोग करना। यह मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखते हुए फसल के उत्पादन को बढ़ाता है और फसल उत्पादन के लागत को भी कम करता है। श्रोताओं, खेत में संतुलित उर्वरक का उपयोग करने से पहले खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, ताकि मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी का सही से पता चल सके। सामान्य तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का उचित अनुपात 4:2:1 की मात्रा सबसे सही मात्रा मानी जाती है। 4:2:1 के अनुपात में तीनों मिलाकर उर्वरक तैयार करें। छोटे पौधों में कम मात्रा में उर्वरक डालें तथा बड़े पौधों में थोड़ा अधिक मात्रा का प्रयोग करें। किसान भाइयों, उर्वरकों को हमेशा पौधों की जड़ों के पास 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में डालें, न कि जमीन के ऊपर बिखेरें। ऊपर बिखेरने से खाद पौधों के जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। उर्वरक का प्रयोग हमेशा नमी युक्त मिट्टी में ही करें, क्योंकि सूखी मिट्टी में उर्वरक का घोल नहीं बन पाता है और पौधे उसे सही से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। श्रोताओं, खड़ी फसल में जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तब ही उर्वरक का प्रयोग करें। किसान भाई बहनों, सामान्य यूरिया की जगह नीम लेपित यूरिया का प्रयोग करें, क्योंकि यह धीरे धीरे घुलता है और पौधों को ज्यादा समय तक पोषण देता है। श्रोताओं, रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खाद जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग करें। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। उर्वरकों को एक बार बुआई के समय दें, दोबारा कल्ले फूटते समय डालें और अंत में एक बार फूल आते समय भी उर्वरक डालें। साथ ही खड़ी फसलों में ओस न होने पर उर्वरक डालें। किसान भाई बहनों, संतुलित उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, साथ ही सूक्ष्म जीवी गतिविधि और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी विकसित होती है। संतुलित उर्वरक के प्रयोग से फसलों को सही पोषण मिलता है, जिससे फसल स्वस्थ रहता है और उत्पादन भी बढ़ता है। किसान भाई बहनों, संतुलित उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों का बहाव कम होता है, जिससे जल प्रदूषण नहीं होता है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। साथ ही अनावश्यक उर्वरक की खपत कम होती है, जिससे खेती की लागत भी कम होती है। श्रोताओं, इसके साथ ही खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। और अब लीजिए सुनिए आज का चिंतन। जीवन वही है जो पूरी निडरता से जिया जाए। भय ही मनुष्य की राह में सबसे बड़ी बाधा है। केवल भय ही एकमात्र ऐसा कारक है जो मनुष्य को महानता की संभावनाओं से दूर ले जाने की क्षमता रखता है। आप भय के कारण वस्तुओं की उपेक्षा नहीं करते, बल्कि आपकी उपेक्षा के कारण उनके लिए भय पैदा होता है। आप जिस चीज का सामना नहीं करते वह आपको अपने वश में कर लेती है, और जो चीज आपको अपने वश में कर लेती है वही आपके भीतर भय उत्पन्न करने का कारण बनती है। आप जिस काम से भयभीत होते हैं उसे ही सबसे पहले करें। निसंदेह आपको भय लगेगा, परंतु आपको इसे फिर भी करना है। आप जिस वस्तु से भयभीत होते हों उसका सामना हमेशा करते रहें, भय अपने आप उजल हो जाएगा। ये था चिंतन FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।

ये प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। आज के दिन की मंगलमय कामना के साथ हम उपस्थित हैं भक्ति गीतों के कार्यक्रम वंदना में। तो आइए पहले सुने ये थी

आप सुन रहे थे भजन, कलाकार थे अनूप जलोटा। इसी के साथ भक्ति गीतों का ये कार्यक्रम वंदना यही संपन्न होता है। FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है और अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस।

एक बार राजा ने विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सुअर को देखा। सुअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता किंतु सुअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 7 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण

0: विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

हम आपको बता दें श्रोताओं, सुबह 7:10 पर कार्यक्रम जरा सुनिए में आज आप सुनिएगा CBSE का ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम कितना बेहतर कितना सफल, सच्चाई और मिथक, इस विषय पर शिक्षक और परीक्षार्थियों की प्रतिक्रिया। सात बजकर 7:20 पर लोक गीतों के कार्यक्रम में आनंद लेंगे भोजपुरी लोक गीतों का कलाकार होंगी शारदा सिन्हा। 7:35 पर बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सौरांजलि में सुनेंगे नजरुल गीति कलाकार मानवेंद्र मुखोपाध्याय से। 7:50 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुनेंगे डॉक्टर पृथ्वीश सरकार से राजेश कुमार की बातचीत हाइपरटेंशन प्रभावित स्वास्थ्य इस विषय पर।

सुबह 8:45 और 10:20 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। 9:05 पर सोमवार विशेष सुरंजना कार्यक्रम में आज सुनेंगे एक ही संगीतकार के गाने। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लेंगे पंडित जितेंद्र अभिषिके के ख्याल गायन का। राग होगा शिव मत भैरव। दिन के 11:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

दोपहर 12:05 का समय होगा कार्यक्रम भावगीत या शीर्षक गीत का। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे पंडित भजन सोपोरी के संतूर वादन। राग होगा पटदीप। दिन के 1:20 और 2:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

3 बजे सुनना ना भूलें NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 3:30 पर उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लुत्फ उठाएं उस्ताद अमजद अली खान के सरोद वादन का। साथ ही आनंद लेंगे पंडित

शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। राग होगा मिश्र खमाज। 3:45 पर आदिवासी लोकगीतों के कार्यक्रम में सुनिए संताली लोकगीत कलाकार स्टीफन सोरेन से।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम जरा सुनिए।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम जरा सुनिए, आज के इस अंक में हम बातें करने वाले हैं सीबीएसई के ऑनलाइन मार्किंग स्कीम के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार सीबीएसई ने रिजल्ट्स को बेहतर करने के लिए कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो ऑनलाइन प्रोसेस के तहत किया था। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस मार्किंग स्कीम के जरिए बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आए और बहुत सारे का जो एक्सपेक्टेशंस था वो बहुत कम हुआ। तो इन सभी सारे विषयों के बारे में बातचीत करने के लिए हम आप पहुंचे हैं जमशेदपुर पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर प्राचार्य महोदया मिसेज नमिता अग्रवाल जी से हम बातें करेंगे इस विषय पर कि उनको ये सीबीएसई मार्किंग स्कीम कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहती हैं इस संदर्भ।
4: गुड मॉर्निंग। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये ऑन स्क्रीन मार्किंग जो हमारे यहाँ हुआ है, जो स्कूल सीबीएसई स्कूल में हुआ है, दिस इज नॉट न्यू टू अस, क्योंकि 2014 में हम लोग ने ये ऑन स्क्रीन मार्किंग जमशेदपुर में किया था। एंड दिस वॉज डन इन टू स्कूल, वन इज जेपीएस एंड वन वॉज विद्या भारती चिन्मया विद्यालय, एंड इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में ऑल इंडिया देयर वर मेनी सेंटर्स वेयर इट कुड नॉट बी अ सक्सेस एट दैट टाइम, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो मच एडवांस्ड। लेकिन अब जो है वो सीन काफी अलग है, स्कूल्स आर वेरी मच अपडेटेड विद टेक्नोलॉजी एंड ऑन स्क्रीन मार्किंग इज द थिंग फॉर टुडे। इट्स समथिंग दैट इज वेरी नेचुरल टू अस एंड आई थिंक दिस शुड बी प्रैक्टिस्ड एवरी ईयर, वी शुड डू दिस ऑन स्क्रीन मार्किंग।
3: और जब सीबीएसई ने ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग को अपनाने की पहल की थी तब सारे स्कूलों से संपर्क किया गया था।
4: हाँ, इसके बारे में मैं बता दूं कि एक साल पहले से ऑलमोस्ट अ ईयर हेड वी वर इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, एंड सब स्कूल्स को एक गूगल फॉर्म भरना था जिसमें वी हैड टू गिव द डिटेल्स अबाउट आर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ मेनी कंप्यूटर्स वी हैव, व्हाट इज आर वाईफाई बैकअप, और आईपी एड्रेस भी शेयर करना था स्कूल से, टीचर्स कितने टेक्नोलॉजी में अपडेटेड हैं, मतलब बहुत सारी डिटेल्स गूगल के फॉर्म के माध्यम से स्कूल्स जो बनते हैं इवैल्यूएशन सेंटर्स, वी हैड टू गिव ऑल दीज डिटेल्स टू सीबीएसई। ये एक साल पहले हो चुका था, तो वी वर वेरी मच अवेयर दैट दिस इज कमिंग, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने मॉक मतलब ट्रेनिंग दिया है, यूट्यूब वीडियोस बने हैं, डायरेक्टली एग्जाम कंट्रोलर ने हम लोग का मीटिंग लिया है, टीचर्स का, हेड एग्जामिनर्स का, इवेल्युएटर्स के साथ। उसके बाद वो वीडियोस शेयर भी हुए हैं यूट्यूब में टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ऑन स्क्रीन मार्किंग। एंड आफ्टर दिस वॉज डन देन देर वॉज मॉक इवेल्युएशन डन बाई ऑल द पीजीटीज, चाहे वो इवेल्युएटर्स हों चाहे नहीं हों, सभी पीजीटीज को ये मॉक इवेल्युएशन करना था इन द एग्जाम सेंटर्स। तो जैसे जिस स्कूल में वो नहीं भी है तो दूसरे स्कूल में उनको जाके वो टेस्ट देना कंपलसरी था। सो दे वर ऑल्सो वेरी मच अवेयर अबाउट व्हाट दे हैव टू डू, किस तरह का प्रोसेस है, क्या ग्लिच आ सकते हैं। तो स्कूल्स को भी अंदाज मिल गया कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हाउ डू वी रेक्टिफाई इट। सबसे जरूरी चीज ये है कि आईटी बैकअप, आईटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, बिकॉज विदाउट दैट सपोर्ट ऑन स्क्रीन मार्किंग डेफिनेटली वुड नॉट हैव हैपेंड।
3: और मैम एक बात और जानना चाहूंगा कि जो सीबीएसई ने ऑनलाइन स्कीम शुरुआत की थी तो कैसा लगा था कि शुरुआत में कि ये सक्सेस हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत सारे शिक्षक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आईटी सपोर्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो कैसा आपको महसूस हुआ था उस समय?
4: देखिए, आज के डेट में तो देयर इज नो क्वेश्चन कि टीचर्स आर नॉट अपडेटेड ऑन टेक्नोलॉजी, है ना। एवरी टीचर हैज टू बी अपडेटेड ऑन टेक्नोलॉजी, टेक सावी, दे आर ऑल्सो यूजिंग इट इन द क्लासरूम, चाहे वो जिस भी शहर में हो, गांव में भी आजकल स्कूल हैं तो टीचर्स को इतना तो आता ही है हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। और जहां तक इवैल्यूएशन सेंटर्स हैं, वो इवैल्यूएशन सेंटर्स ऐसी जगह में ही बनते हैं जहां पे उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, वे दे आर एबल टू हैंडल दिस ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो

0: जैसे हमारी लैब में ऑलमोस्ट 70 कंप्यूटर्स वी हैड केप्ट इट रेडी फॉर द ऑन स्क्रीन मार्किंग. एक टाइम में एक समय में तीन सब्जेक्ट के भी इवैल्यूएशन साइड बाय साइड हो रहे थे एंड वी हैड टू गिव देम द बैकअप ऑफ ऑल दिस. सो इसके बारे में तो डाउट मुझे बिल्कुल ही नहीं था कि ऑन स्क्रीन मार्किंग विल बी अ सक्सेस और नॉट.
1: और पूरे भारत में चर्चाओं का बाजार घर में सीबीएसई के ऑनलाइन मार्किंग स्कीम को लेकर के. क्या कुछ कहना चाहेंगी उन सभी सुनने वालों को कि सीबीएसई मार्किंग स्कीम अच्छा है या फिर बहुत अच्छा है?
0: सी व्हेन एनीथिंग न्यू हैपेंस देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, है ना. तो दिस इज नथिंग, मतलब ये तो इट्स ह्यूमन नेचर कि कुछ भी चीज नया इंट्रोड्यूस होता है तो स्पेकुलेशन होता है, अप्रिहेंशंस होते हैं, पीपल थिंक दैट कुछ भी मिस्टेक हुआ तो इसके वजह से ही हुआ होगा. सो देयर आर अ फ्यू सजेशंस व्हिच आई वुड लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट्स, टू द स्कूल्स, इवन टू सीबीएसई फॉर दैट मैटर, दैट स्टूडेंट्स शुड बी मेड अवेयर दैट ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग विल बी डन ऑफ योर आंसर स्क्रिप्ट. सो यू मस्ट राइट इन अ वेरी लेजिबल हैंड राइटिंग, योर हैंड राइटिंग शुड बी क्लियर, यू मस्ट राइट विद इन द मार्जिन्स ताकि जब वो कॉपी स्कैन हो तो कुछ भी मिस आउट नहीं हो. देयर इज ऑल्सो वन सजेशन व्हिच आई वुड लाइक टू गिव टू सीबीएसई दैट मे बी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू राइट विद ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. इससे क्या होगा कि जो आंसर स्क्रिप्ट पे लिखावट है वो बहुत क्लियर होगा तो स्कैन करते समय दे वोंट बी एनी एरर्स. बिकॉज ऐसा देखा गया है ड्यूरिंग इवैल्यूएशन दैट सम कॉपीज वर नॉट व्हाइल स्कैनिंग, व्हेन वी गॉट द स्कैन्ड कॉपीज द प्रिंट वाज वेरी लाइट, व्हिच ऑफ कोर्स इट वाज सेंट बैक एंड द स्कैनिंग वाज डन अगेन एंड अगेन द करेक्शन वाज डन. लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ अगर वो पेन सही ढंग का पेन बच्चे यूज करें तो वो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना. तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्कैनिंग के लिए बहुत जरूरी है कि जो इंक आप यूज कर रहे हैं वो लिखने के लिए वो बहुत क्लियर होना चाहिए. सो बिल्कुल. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई अच्छी चीज शुरू हुए तो उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए.
1: श्रोताओं, अभी हमारे साथ है आईटी सेल के मिंटू कुमार जी, आइए इनसे बातें करते हैं. मिंटू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे ओएसएम को लेकर?
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रखे हुए थे कि आईटी के वर्क में हमको जो जो प्रॉब्लम आ सकती है उसको सॉर्ट आउट करके और सेकेंडरी की क्या प्रॉब्लम होने पे उसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है वो सारा प्रिपरेशन किया गया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा क्योंकि हम लोग ने जो एक्सपेक्ट किया था जितने टाइम ड्यूरेशन में हमारा ये काम हो जाना चाहिए उसे ज्यादा ही कम समय में हम लोगों ने कर लिया. तो इसे यही लगता है कि वैसे बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें समय की बचत होती है हमारी, साथ साथ टेक्नोलॉजी में तो अवेयरनेस आपको होना ही चाहिए और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि हमारे सारे टीचर्स इसमें बहुत अच्छे तरह से वर्कआउट किए और सीबीएसई की पहल को हम लोग बहुत अप्रिसिएट करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि इस तरह के काम लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट होता ही रहेगा और इसे हमारा काम जो है वो ज्यादा स्मूथ होगा एज अ आईटी सेल से जुड़ा होने से.
1: कहूँ कि आप ओएसएम के पक्ष में है या नहीं तो क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल, मैं 100% चाहूंगा कि आने वाले एग्जामिनेशन भी ओएसएम और इवन मैं ये भी चाहूंगा कि आने वाले 10th एग्जाम हो तो वो भी ओएसएम के थ्रू ही किया जाए.
1: श्रोताओं, आइए शिक्षक से बात करते हैं कि जो कि हेड एग्जामिनर हैं, उनका नाम कृष्णा कुमार जी हैं. कृष्णा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे ओएसएम को लेकर?
3: ओएसएम वाज अ गुड मूव बाय सीबीएसई बिकॉज लॉट्स ऑफ पैटर्न ऑफ स्टडीज इज बीइंग डेवलप्ड. सो सीबीएसई इज आल्सो ट्राइंग टू डेवलप इन द फील्ड ऑफ इवैल्यूएशन. सो ओएसएम वाज अ गुड मूव. नाउ व्हेन वी स्टार्टेड विद द ओएसएम, लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग वाज गिवन टू द टीचर्स अलॉन्ग विद एचई एंड द सीएनएसईआर. सो द प्रॉब्लम व्हिच वी वर फेसिंग अर्लियर, दोज वर बीइंग रिमूव्ड एंड ऑन द फाइनल स्क्रीन when the evaluation was being done. So, ये teachers friendly है, evaluator friendly है, इसलिए क्योंकि जितने भी evaluations हो रहे थे वो first process में evaluation के बाद it was going to AHE. AHE उसका फिर से वो check कर रहे हैं कि वो all the corrections which were done is up to mark or not and then again the papers were going to the screen of head examiner where it was surety that the copies which were corrected there will not be any problem and I can say that true and fair evaluation was being done in OSM.
1: मिलाकर ओएसएम को आप 100 में कितने मार्क्स देंगे?
3: 100 में 100 ही देंगे.
1: अभी हमारे साथ अब्रो पॉल जी हैं जो फिजिक्स के टीचर हैं, आइए जानते हैं इनसे कि इनको कैसा लगा ओएसएम प्रैक्टिस को लेकर.
4: सबसे पहले तो मैं सीबीएसई को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर दिस इनिशिएटिव, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. स्टेप मार्किंग था जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, आपको हर एक स्टेप को देखना है, करना है. यू कैन नॉट लीव एनी ऑफ द क्वेश्चंस, यू विल हैव टू चेक ईच एंड एवरी ऑफ द आंसर शीट. इससे कहीं भी कोई पार्ट छूट नहीं सकता है. यू विल हैव टू गो थ्रू ईच ईच एंड एवरी पेजेस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली, तभी जाके आप उस पेपर को सबमिट कर सकेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा फिजिकल पेपर के साथ, नो डस्ट, नथिंग एज सच। आप इजिली कंप्यूटर पे बैठिए और आप देखिए कॉपीज आ रहे हैं एक के बाद एक, आप करेक्ट करते रहिए, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए। एग्जामिनर चेक करते हैं, फिर सेकंड एग्जामिनर उस चीज को री इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं सही है या गलत है। वो सारा जो टाइम था वो सेव हो गया है। कॉपी जब यहाँ से एग्जाम खत्म होता है सीबीएसई के पास जाता है, सीबीएसई फिर उसको वापस से बंडल करके वापस भेजती है, तो ट्रांसपोर्टेशन, टाइम, कॉस्ट, ये सब बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है।
1: अब थोड़ी बातें हम लोग कर लेते हैं बच्चों से। अभी हमारे साथ शुभोजीत जी हैं। शुभोजीत, आप क्या लिए हैं?
5: सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग मी। मेरा बैकग्राउंड 12th में पीसीबी था, मतलब बायो बैकग्राउंड,
1: बायो साइंस था
5: जी। सर, जो हम लोग का ओएसएम था बोर्ड रिजल्ट्स इवैल्यूएशन के लिए, तो उसके लिए आई बिलीव कि जितना भी, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट किए थे वो एक्सपेक्टेशंस मेरा मीट हुआ है। और लाइक जितने भी ड्रॉबैक्स बोले जा रहे हैं लाइक स्टूडेंट्स के तरफ से सोशल मीडिया पे, किसी भी नए चीज के कई तरीके के ओपिनियंस उभर के आते हैं। तो रीवैल्यूएशन का भी जो भी प्रोसेस है अभी बहुत ज्यादा, मतलब अफोर्डेबल कर दिया गया है। तो आई बिलीव कि इसके वजह से बहुत हद तक फीसिबिलिटी ज्यादा बढ़ गया है। स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत भी आ रहे हैं तो सीबीएसई इज देयर टू हेल्प देम आउट।
1: अच्छा, आपने जो एक्सपेक्टेशन किया था, क्या ओएसएम के मार्किंग के द्वारा वो पूरा हो पाया?
5: जी सर, बिल्कुल। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मेरे रिजल्ट में पूरा उसी तरीके का मार्क्स था।
1: मतलब कुल मिलाकर आपसे कहा जाए तो आप ओएसएम से संतुष्ट हो?
5: जी सर, बिल्कुल।
1: अभी हमारे साथ अनिमेश कुमार जी हैं, आइए बातें करते हैं इनसे। आपका सब्जेक्ट क्या है, अपने बारे में बताएं।
6: थैंक यू अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका देने के लिए। मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है 12th में।
1: और जो एक्सपेक्टेशन था ओएसएम को लेकर के, आपकी जो मार्किंग क्या था एक्सपेक्टेशन, वो उसमें फुलफिल हुए?
6: एक्सपेक्टेशंस तो ऑलमोस्ट फुलफिल हुए, बट एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा हाई होते जाते हैं। जितना भी आए उससे और हाई और ज्यादा चाहिए। ह्यूमन माइंड्स कैन नेवर बी सैटिस्फाइड, तो एक्सपेक्टेशंस आर मेट, ऑलमोस्ट मेट।
1: और सीबीएसई ने पहली बार ओएसएम को इम्प्लांट किया, और बहुत सारे बोर्ड्स हैं हमारे भारत में, जैसे आईसीएसई हो गया, जैक बोर्ड हो गया, अदर स्टेट बोर्ड हो गया, तो वो सारे बोर्ड्स और सीबीएसई के ओएसएम में क्या आप डिफरेंसेस देखते हो?
6: जैसे कि बाकी सब बोर्ड्स में कॉपी पेन पेपर मोड में चेक होता है, तो टोटलिंग एरर्स हो सकते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं, पेपर अनचेक्ड रह जाते हैं, और फिर वो बहुत बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इवेल्युएटर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। बट ओएसएम में ये सारे चीज़ नहीं हो सकते हैं। आप क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते हैं, मार्क्स टोटलिंग मिस्टेक्स नहीं हो सकते, तो ये स्टूडेंट्स को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देते हैं कि हाँ ये तो नहीं हुआ होगा मेरे साथ।
1: कितना मार्क्स आप देना चाहेंगे इस पर?
6: आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट 8।
1: श्रोताओं, अभी हम लोगों ने जाना कि किस तरह से सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन को डेवलप किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो ओएसएम जो है आधुनिक दौर की वह प्रक्रिया है जो समय को बचाती है और रिजल्ट की बेहतरी के लिए आगे की ओर अग्रसर करती है। तो मैं कहना चाहूँगा सभी सुनने वालों से कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जो भी रूमर्स उड़ते हैं आज के दौर में, उनका कोई सिर पैर नहीं होता। पहले आप उसको PIB फैक्ट चेक में जा करके आप उसको पहले पड़ताल कीजिए कि वो फैक्ट चेक वास्तव में सही है या नहीं। अगर सही है तो आप फिर उसके ऊपर विचार कीजिए और उस पर अपना निर्णय को बनाइए। और मैं कहना चाहूँगा सभी देशवासियों से, सभी सुनने वालों से, कि CBSE ने OSM को जो लागू किया है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेटर है।
7: जरा सुनिए,
8: जरा सुनिए,
7: जरा सुनिए।
9: कार्यक्रम जरा सुनिए में आप सुन रहे थे सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम कितना बेहतर, कितना सफल, सच्चाई और मिथक, इस विषय पर शिक्षक और परीक्षार्थियों की प्रतिक्रिया।
10: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
11: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। और अब लोक गीतों के कार्यक्रम में आनंद लें। भोजपुरी लोक गीतों का कलाकार है।

आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, कलाकार थी शारदा सिन्हा। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। और अब बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि में सुने नजरुल गीती, कलाकार है मानवेंद्र।

0: রাতে আমাকে দেখো তুমি উদাসী।
1: आप सुन रहे थे नजरुल गीति, कलाकार थे मानवेंद्र मुखोपाध्याय। इसी के साथ बांग्ला गीतों का ये कार्यक्रम सुरांजलि यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर। और अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुने डॉक्टर पृथ्वीश सरकार से राजेश कुमार की बातचीत हाइपरटेंशन प्रभावित स्वास्थ्य इस विषय पर।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के कल के अंक में डॉक्टर पृथ्वीश सरकार हमें जानकारी दे रहे थे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन से किस कदर हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, आज जानेंगे इसी बारे में। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है?
1: ये ब्लड प्रेशर हम लोगों को तीन चीज करता है मेनली। वन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, मतलब दिल की बीमारी, जो हम लोग बोलते हैं अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप 2 times नॉर्मल से अपेक्षा आपको होगा। दूसरा है स्ट्रोक, इस्केमिक CVA जिसको बोलते हैं, सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट, हटात देखते हैं किसी के माथे में हेमरेज हो गया, कोई लकवा मार दिया, ये अगर हाई ब्लड प्रेशर है ये 7 times नॉर्मल की अपेक्षा ज्यादा हो सकती है। तीसरी किडनी डिजीज, ये कहते हैं कम से कम 4 times नॉर्मल की अपेक्षा ज्यादा हो सकती है। और फिफ्थ एक है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, सुनापन आना, पाँव का झुंझुनाहट होना, ये सब है, ये आपको मिल सकता है। ये लक्षण जब भी आता है किसी, साधारणतः देखा गया है, ये लोग महसूस भी करते हैं, सर दर्द, किसी किसी को सर दर्द नहीं भी होता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, उस समय आपको आता है गिडीनेस, मतलब सर का चकराना,
0: अच्छा।
1: थकावट होना, पाँव फूल जाना, दिल का धड़कन तेज हो जाना,
0: कभी कभी बिना लक्षण के भी अंदर
1: अंदर अंदर कुछ अगर ये कोई बीमारी से एसोसिएटेड हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज हुआ या किडनी फेलियर डिजीज हुआ, ये सब डिजीज से एसोसिएटेड हो जाते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर के लक्षण आपको क्लियर कट नहीं मिल सकते।
0: अच्छा।
1: लेकिन आपको थकावट एक ऐसी चीज है हाई ब्लड प्रेशर में आपको महसूस हो, इसके अलावा गुस्सा आना, जो हम लोग प्राकृतिक गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, ये सब तो होते हैं।
0: तो आपने हाई ब्लड प्रेशर की बात की, तो एक नॉर्मल रेंज क्या होता है और कौन सा रेंज है जो उसके बाद खतरनाक हो जाता है?
1: हम लोगों का नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल जो होना है वो 120/80 कहलाता है, 139/80 हम लोग प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। ये प्री हाइपरटेंशन मतलब इसमें आपको कंट्रोल करना है, मतलब बिना दवा के ये कंट्रोल करना है, खाने की
0: दिनचर्या में बदलाव,
1: दिनचर्या में बदलाव, खाने पीने में बदलाव, ये सब करने से होगा। इसके बाद 140 से 160 के बीच रखते हैं, 160 से 180 के बीच में रखते हैं, फिर 180 के ऊपर रखते हैं, तीन हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्राइटेरिया। इसी के अनुसार डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर
0: डेंजरस, खतरनाक,
1: खतरनाक जब जब बढ़ते जाता है उतना खतरनाक हो गया, सबसे खतरनाक 180 के ऊपर होंगे। रेंज अभी जो रिसेंट जो आई है, ये रेंज उम्र के ऊपर किया गया है। एक पुरुष अगर वो 60 साल से ऊपर का एज है तो उसको 150, क्योंकि उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ते जाता है, तो 150 से 90 को हम लोग नॉर्मल मान लिए हैं।
0: कैसे से बचा जाए, जीवन शैली में किस तरह का बदलाव लाना चाहिए ताकि थोड़ा उससे लोग बचे रहें?
1: सबसे पहला है इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिंदगी को एक्टिव करना है।
0: अच्छा।
1: एक्टिव करने के लिए हम लोगों को एक्सरसाइज करना है, हम लोगों को वॉक करनी है, वॉक बोलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग जिसको बोलते हैं, तेजी से चलने की है,

0: लोग को एटलीस्ट 35 मिनट्स पर डे 5 डेज ए वीक करना चाहिए। आपके क्या खाने में क्या होना चाहिए, पहला चीज है डाइट विथ फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड लो सोडियम इनटेक एंड वाटर।
1: मैंने कहने का मतलब कि नमक की मात्रा
0: कम रहे, फ्रूट ज्यादा लीजिए, फ्रूट लीजिए, पानी लीजिए। इसके अलावा तेल की मात्रा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ब्लड प्रेशर का एक जनक है, ये तेल की मात्रा को आपको कम करना पड़ेगा। अब जो एसोसिएटेड विद डायबिटीज है या किडनी डिजीज है उनको और टाइट कंट्रोल करना पड़ेगा।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कि हाइपरटेंशन खतरनाक तो है, लेकिन अगर हम अपने जीवन शैली में थोड़ा सा भी बदलाव लाएं तो बहुत हद तक हम इससे निजात पा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर सरकार ने जैसी जानकारियां दी, उम्मीद है इस पे यदि आप अमल करेंगे बहुत हद तक हाइपरटेंशन से बचे रहेंगे और पूरी तरह से आप स्वस्थ भी रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सुन रहे थे डॉक्टर पृथ्वेश सरकार से राजेश कुमार की बातचीत हाइपरटेंशन और प्रभावित स्वास्थ्य इस विषय पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
5: हेलो डॉक्टर,
6: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
5: हेलो डॉक्टर,
6: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
7: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 MHz पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
2: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजाति समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
5: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
8: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
8: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 175,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
9: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हुर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति। हुर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार। फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हुर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा। पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च। कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ। आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार। शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
11: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
10: News Services Division of Akashwani will broadcast special programs as part of a series People's Padma on Akashwani.
12: We launched our environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
13: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
14: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में असंग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
10: In these episodes, we provide listeners insights into the work and life of Padma awardees. To listen to the episodes, tune into 100.1 Akashwani Gold today from 9:10 a.m. onwards. It can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights.
4: Narendra Modi Sarkar ke Guru Mantri hai nate.
15: As the Home Minister of the Narendra Modi government, I want to make it clear that no restriction of the UCC will apply to the tribal world or any tribal individual. No violation of tribal rights will occur because of the UCC. In the two states where the Bharatiya Janata Party is in power, Gujarat and Uttarakhand, we have implemented the UCC, and by making special provisions, the Narendra Modi government has worked to keep all the tribal communities out of the purview of the UCC.
10: The Home Minister also said that the tribal welfare budget, which stood at 28,000 crore rupees during the Congress-led government, has been increased to 1,50,000 crore rupees under the Narendra Modi government. Petrol price has been hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre today, marking the fourth hike in 2 weeks. With this revision, petrol will now cost 102.12 rupees per litre in Delhi, while diesel will now cost 95.20 rupees per litre in the national capital. The National Testing Agency, NTA, has postponed the Common University Entrance Test undergraduate 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid al-Zuha or Bakr Eid holiday as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day. Until today, CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit the applications accordingly. It stated that the start date for accepting evaluation requests shall be communicated soon. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebration of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jaishankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism.
16: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge.
10: The External Affairs Minister said that both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices. He said many convergences make both nations effective strategic partners in multiple domains. Mentioning the visit of U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio, Dr. Jaishankar said this visit highlights the significance of India-U.S. ties in contemporary times.
16: Prime Minister Modi and President Trump set out a pathway for the further development of our enduring partnership. Their goal was to advance the aspirations of our people for a bright and prosperous future while also serving global good.
10: U.S. President Donald Trump dialed U.S. Ambassador to India Sergio Gord during an event celebrating America's 250 years of independence at the Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. Mr. Trump described Prime Minister Narendra Modi as a friend and stated the ties between the two nations had never been so close. Mr. Trump said he loves India and even called himself a big fan of PM Modi. Mr. Trump said India can count on him 100%. The U.S. ambassador held his phone to a microphone for the audience to hear Trump's remarks.
17: I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. I just want to say a very good evening to everybody this morning here and this evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country.
10: The event was graced by External Affairs Minister S. Jaishankar, U.S. Secretary of State Marco Rubio, and U.S. Ambassador Sergio Gore. U.S. President's remarks came amid Secretary of State Marco Rubio's four-day visit to India. U.S. President Donald Trump said that he has told his representatives not to rush into any deal with Iran as his administration played down hopes of an imminent breakthrough in the three-month-old war. He said that any future deal with Iran under his administration would involve no financial concessions and would be fundamentally different from the agreement reached during former U.S. President Barack Obama's tenure. He also criticized the Obama-era Iran nuclear deal and claimed his proposed agreement would prevent Tehran from obtaining nuclear weapons and the deal will differ from the one crafted by former U.S. President Barack Obama. Indian High Commissioner to Bangladesh Pranay Verma paid a farewell call on Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman yesterday. According to a post by the High Commission on India and Bangladesh on social media platform X, the Prime Minister thanked Mr. Verma for his contributions towards strengthening India-Bangladesh relations and conveyed best wishes for his next assignment. Mr. Verma reaffirmed India's willingness to deepen multifaceted engagement with Bangladesh for the mutual benefit and shared prosperity of the people of both countries. The annual five-day Hajj pilgrimage commences today amidst regional tension in West Asia as more than 1.6 million Muslims from across the world, including India, begins their journey from the holy city of Makkah to assemble in the tent city of Mina in Saudi Arabia. They will spend the night there and move towards the plains of Arafat at dawn tomorrow for the day's main ritual of Hajj, reciting prayers. About 1,75,000 pilgrims from India are participating in this year's Hajj pilgrimage. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Kolkata Knight Riders by 40 runs at the Eden Gardens in Kolkata last night. Delhi Capitals set a target of 204 runs for Kolkata Knight Riders, KKR. In reply, KKR scored only 163 runs in 18.4 overs. Put into bat, Delhi Capitals posted 203 runs for the loss of 5 wickets in the stipulated 20 overs. Early in the day, in another fixture, Rajasthan Royals defeated host Mumbai Indians by 30 runs at the Wankhede Stadium. India Meteorological Department has issued an orange alert for heat wave conditions today in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab, parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha and Telangana also likely to witness severe heat wave conditions during the day. In a bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30, we will bring an insightful discussion on one-stop digital support for senior citizens, Jeevan and Shatayu apps with Monali P. D. Dakte, Joint Secretary, Minister of Social Justice and Empowerment. During the program, listeners can ask questions on recently launched apps by the Minister of Social Justice and Empowerment to support senior citizens in accessing healthcare information on welfare schemes and ensuring the safety and care. To participate, simply dial the telephone number 011-2331-0481, 011-2371-7117, 011-2371-7106 and 011-2331-4444 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
18: Thank you, Abhishek. Talks between External Affairs Minister S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio is covered prominently by the dailies. India and U.S. reform strategic ties, push trade, energy deals, leads the Asian age. Rubio, Jaishankar stressed need for unimpeded maritime trade, writes the Hindu. The statesman, quoting U.S. Secretary of State Marco Rubio, says, U.S.-Pakistan alliance not at the expense of ties with India. West Bengal orders setting up of holding centres for illegal foreigners awaiting deportation, reports the Tribune. The Pioneer in its editorial piece states, addressing India's job crisis, the paper says the employment question is not merely economic, it is deeply linked to dignity and aspiration of the youth and affects national confidence. Any nation that aspires to be superpower must be backed by its youth that is meaningfully employed and has a positive mindset. Indeed, India is one of the youngest nations of the world and has a sizable youthful energy. But if it is not engaged in constructive work, there is a high chance of it going wayward. In keeping with his commitment to provide jobs, Prime Minister Narendra Modi presided over the 19th edition of the Rozgar Mela. Quad grouping is vital, says Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi, reports the Hindu. And finally, Delhi's shopping problem just became a business. Well, the Pioneer reports that Carrymen, which began operations in Lajpat Nagar in April, offers shoppers a trained assistant who accompanies them through the market, carries their bags, holds their spot in queues, helps them navigate stores. And with that, it's back to you, Abhishek.
10: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from mandate of Uniform Civil Code. Petrol price hike by 2 rupees 61 paise per litre, while that of diesel by 2 rupees 71 paise per litre. National Testing Agency postponed CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से करेंगी सम्मानित। मरणोपरांत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी जाएगी पद्म भूषण पुरस्कार। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर अमित शाह ने किया ऐलान, जनजातीय समाज यूसीसी से रहेगा अलग। राज्य के 47 स्थानों पर आज मनाया जाएगा दामोदर महोत्सव, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे महोत्सव की शुरुआत। राज्य में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब। मौसम विभाग ने गढ़वा पलामू चतरा में हीट वेव का अलर्ट किया जारी। और 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे दिन टूटे कई रिकॉर्ड, देव मीणा कुलदीप कुमार ने कॉमनवेल्थ के लिए किया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मरणोपरांत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: राज्य के 47 स्थानों में आज दामोदर महोत्सव मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत लोहरदगा स्थित दामोदर नदी के उद्गम स्थल चूल्हा पानी में दामोदर महोत्सव आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार इस महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक राज्य के विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठकों में आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग, 26 मई को स्कूली शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, जबकि 27 मई को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा की जाएगी। बकरीद को लेकर सभी जिलों की पुलिस अलर्ट मोड में है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसे लेकर रामगढ़ पुलिस केंद्र में मॉक ड्रिल कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने और लोगों से भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। इधर रांची में बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महावीर मंडल, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, अंजुमन इस्लामिया और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार ने पिछले 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज से देश भर में पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए महंगा कर दिया गया है। राजधानी रांची में अब पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल की कीमत 100 रुपए 37 पैसे हो गए हैं। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपए 35 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपए 53 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। दुमका के मसानजोर डैम में कल शाम नौका विहार के दौरान एक पर्यटक की डूबने से मौत हो गई। मसानजोर थाना प्रभारी अवधेश कुमार के अनुसार घटना में 4 पर्यटक तैरकर सुरक्षित किनारे आ गए, जबकि एक पर्यटक गहरे पानी में डूब गया। इधर दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में कल रात स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट की कोशिश की गई। इस दौरान अपराधियों ने हवा में 2 राउंड फायरिंग भी की। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सिमडेगा पुलिस ने गौ तस्करी के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि आरोपी गौवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी में शामिल था और ओडिशा से सिमडेगा होकर पशुओं से लदे वाहनों को पार कराने का काम करता था।
3: गौवंशीय पशुओं की तस्करी का संगठित ग्रोह चला रहे थे, ओडिशा से सभी को मैनेज करते थे। उसके बाद सिमडेगा की जिम्मेदारी इन्होंने अन्य लोगों का नाम स्पष्ट किया है। उसके बाद कुछ लोगों की जिम्मेदारी खुट्टी के लोगों की थी। उसके बाद रांची होते हुए ये अवैध गौवंशीय पशुओं को ओडिशा भेजने का काम करते थे। अब तक इन पे ओडिशा और सिमडेगा जिला के अंतर्गत कुल 8 कांड दर्ज हैं और अन्य भी अनुसंधान जारी है।
0: राज्य भर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रांची में भी पारा 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी और लू के कारण पिछले 3 दिनों में जमशेदपुर 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ताज़ा मामला गोलमुरी थाना क्षेत्र के न्यू केबल टाउन बस्ती का है, जहां बिरला मंदिर के पास एक व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जांचा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के 3रे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई नए रिकॉर्ड बनाए। प्रतियोगिता में पोल वॉल्ट, लंबी कूद, ऊंची कूद और हर्डल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ क्वालिफिकेशन हासिल कर अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। एक रिपोर्ट।
4: महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में हरियाणा की रवीना ने अपनी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के हैमर थ्रो मुकाबले में पंजाब की मनप्रीत कौर ने शानदार थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। सर्वेश अनिल कुसारे ने 2.28 मीटर की शानदार छलांग लगाई। उनके साथ ही आदर्श राम ने 2.22 मीटर की कूद लगाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक बड़ा धमाका विश्व के पोल वॉल्ट में भी हुआ, जहां मध्य प्रदेश अकादमी के देव मीना ने 5.42 मीटर की छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है।
5: आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज से की जाने वाली समीक्षा बैठकों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आज से 11 जून तक सीएम करेंगे विकास योजनाओं की समीक्षा। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्य के सभी हाईस्कूल होंगे प्लस टू में अपग्रेड। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने राज्य में बढ़ती गर्मी के प्रकोप को सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से करेंगी सम्मानित। मरणोपरांत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी जाएगी पद्म भूषण पुरस्कार। भगवान बिरसा

मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर अमित शाह ने किया ऐलान, जनजातीय समाज यूसीसी से रहेगा अलग। राज्य के 47 स्थानों पर आज मनाया जाएगा दामोदर महोत्सव। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे महोत्सव की शुरुआत। राज्य में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा में हीट वेव का अलर्ट किया जारी। 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन और प्रतियोगिता के तीसरे दिन टूटे कई रिकॉर्ड। देव मीणा, कुलदीप कुमार ने कॉमनवेल्थ के लिए किया क्वालिफाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के लिए करें जरा

नाम शबाना फिल्म का ये गीत आपने सुना श्रेया घोषाल की आवाज में। संगीत निर्देशन किया था रोचा कोहली ने और गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने। इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। सुबह के 9 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर स्वरूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 18 ओवर और 4 गेंद में 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी की आशंका है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी की जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सुबह के 9:05 हुए हैं। कार्यक्रम सुरंजना के लिए करें जरा सा इंतजार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कार्यक्रम सुरंजना में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार करें आपकी दोस्त नेहा का सुप्रीम नमस्कार। आज है सोमवार और आज के दिन सुरंजना कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ही संगीतकार के गीत। तो आज आप सुनेंगे संगीतकार रविंद्र जैन के गाने। फिलहाल बातों से पहले सुने उनके ही संगीत निर्देशन में बना ये गाना।

संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। उनके पिता इंद्रमणि जैन संस्कृत के बड़े पंडित और आयुर्वेदाचार्य थे। माता का नाम किरण देवी था। 7 भाई बहनों में तीसरे संतान थे रविंद्र जैन। जन्म से ही उनकी आंखें बंद थीं। रविंद्र जैन के पिता ने डॉक्टर की नसीहत को ध्यान में रखकर उन्हें संगीत सिखाने का फैसला लिया। रविंद्र ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर मन की आंखों से सब कुछ जानने समझने की सफल कोशिश की। बेहद ही आध्यात्मिक माहौल में उनका बचपन बीता। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के रविंद्र एक बार सुनी गई कविता छंद दोहे को कंठस्थ कर लेते, जो उन्हें हमेशा याद रहती। वे रोज मंदिर जाते और वहां एक भजन सुनाना उनकी दिनचर्या में शामिल था। बदले में पिताजी से इनाम में 1 रुपया भी पाते थे।

बचपन में इन्होंने शरारतें भी खूब की। घर के नियम के उलट वे देर रात को घर पहुंचते और फिर पिताजी की डांट भी उन्हें खानी पड़ती। अपने दोस्त मंडली के साथ गाने बजाने की टोली बनाकर ये अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के आसपास मंडराया करते और टीन के डब्बे पर थाप लगाकर आने जाने वालों का मनोरंजन किया करते थे। एक दिन ना जाने क्या सूझी कि डब्बे को सीधा कर दिया। देखते ही देखते डब्बा चिल्लरों से भर गया। घर आकर उन्होंने माँ के चरणों में सारी चिल्लर उंडेल दी। पिताजी ने देखा तो वे आग बबूला हो उठे और सारा पैसा देने वालों को लौटाने का आदेश दे दिया। अब परेशानी ये आई कि अजनबियों को किस तरह ढूंढा जाए और उन्हें पैसे वापस किया जाए। तो मित्र मंडली ने ये समाधान निकाला कि चाट पकौड़े के ठेले पर क्यों ना जमकर चाट पकौड़े ही खा ली जाए।

रविंद्र जैन ने कलकत्ता की रविंद्र संगीत के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। अपने माता पिता से वहां जाने की इच्छा जताई और अपने भाई के साथ चल पड़े। कानपुर स्टेशन में नाश्ते वगैरह के लिए नीचे उतरे तो ट्रेन चल पड़ी। भाई तो डिब्बे में चढ़ गए लेकिन रविंद्र नहीं चढ़ पाए। डिब्बे से निकले अजनबी हाथ ने उन्हें ऊपर खींच लिया और कहा, जब तक भाई ना मिले हमारे साथ रहो। भाई तो मिल गए लेकिन उससे भी बड़ी बात

उनका भाग्य उनसे मिल गया। जी हाँ श्रोताओं, वे अजनबी थे फिल्म निर्माता राधेश्याम झुनझुनवाला, जिनके जरिए उन्हें संगीत सिखाने की ट्यूशन मिली। फिर पहली नौकरी बालिका विद्या भवन में 40 रुपए पर लगी। यहीं उनकी मुलाकात पंडित जसराज और पंडित मणि रत्नम से हुई। सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुति के लिए 151 रुपए तक मिलने लगे। यहाँ पर संजीव कुमार ने उनके हुनर को पहचाना और मुंबई आने का न्योता दे डाला। यहाँ पर संजीव कुमार ने उन्हें निर्माता एनएनसीपी से मिलवाया और वहां पर उन्होंने एक से बढ़कर एक धुनें सभी को सुनाई। इस तरह से फिल्म जगत में उन्होंने प्रवेश पा लिया, लेकिन अभी भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए थे। राजश्री प्रोडक्शन की ताराचंद बड़जात्या से मुलाकात रविंद्र जैन के फिल्मी करियर को संवार गई। 1975 में आई फिल्म गीत गाता चल की अपार सफलता के बाद उनका कारवां आगे बढ़ता ही चला गया। एक के बाद एक कई यादगार गानों का तोहफा उन्होंने अपने चाहने वालों को दिया। 9 अक्टूबर 2015 को इनका देहांत हो गया। वे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने मन की आंखों से दुनिया को समझा और अपने सात सुरों के माध्यम से जितना उन्होंने समाज से पाया था उससे कई गुना अधिक अपने श्रोताओं को

0: और देखते ही देखते घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है श्रोताओं कि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे यानी आपकी दोस्त नेहा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे

0: मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर। और अब शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद ले पंडित जितेंद्र अभिषेकी के ख्याल गायन का। राग है शिव मद भैरव।

0: आप सुन रहे थे पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन, राग था श्रीमद भैरव। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 10:10 पर होगा विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्मभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
3: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की वृद्धि की गई। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। नवीनतम जानकारी के लिए विद्यार्थियों को NTA की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क रखने को कहा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला लिया गया है। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी नैतिक साझेदार बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। IPL क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 18 ओवर और 4 गेंद में 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है कि प्रकृति की असीम कृपा, सूर्यदेव की ऊर्जा और वर्षा बूंदों के आशीर्वाद से हर एक का जीवन आनंद और सौभाग्य से भरपूर हो। संस्कृत की एक उक्ति साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि धरती सदा सर्वदा हरी भरी और समृद्ध बनी रहे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी गर्मी और उमस रहेगी। वहीं मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं केरल, माहे, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों से ईरान के साथ किसी भी समझौते में जल्दबाजी न करने को कहा। पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय तनाव के बीच आज से

0: पांच दिवसीय हज की शुरुआत और नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से ओस्लो में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और उन पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर को फोन पर बातचीत में ये बात कही। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तैयार है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
1: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो की यात्रा का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यात्रा समसामयिक संदर्भ में अमेरिका और भारत के संबंधों का महत्व उजागर करती है।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी। ये समझौता पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुए समझौते से पूरी तरह अलग होगा। श्री ट्रंप ने ओबामा काल के ईरान परमाणु समझौते की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते से ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोका जा सकेगा।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह,
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तुर्की की दंगा पुलिस ने कल मुख्य विपक्षी दल के मुख्यालय में आंसू गैस के गोले दागे और जबरन अपदस्थ नेतृत्व को बाहर कर दिया। इससे तुर्की के लोकतंत्र के केंद्र में संकट गहरा गया है। एक रिपोर्ट।
3: रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP की इमारत के अंदर आंसू गैस के बादल छा गए और अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये विवाद तब शुरू हुआ जब तुर्की की एक अदालत ने चुनाव में गड़बड़ी का हवाला देते हुए CHP के मौजूदा नेता ओजगुर उजेल को पद से हटा दिया और 2023 के उस चुनाव के नतीजों को भी रद्द कर दिया गया जिसके जरिए वे चुने गए थे। इसके बाद रविवार को अंकारा के गवर्नर ने मुख्यालय को खाली कराने का आदेश दिया। अदालत ने उजेल की जगह पार्टी के पुराने अध्यक्ष कमाल किलिक दराग्लू को फिर से पद पर बहाल कर दिया जो 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में तैयब अर्दोगान से हार गए थे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया की एक एरोस्पेस फैक्ट्री में प्लास्टिक बनाने वाले खतरनाक रसायन का टैंक क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे की वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने का आदेश जारी किया गया है। पिछले सप्ताह GKN एरोस्पेस कंपनी में करीब 22 से 26,000 लीटर मिथाइल मेथिक्रिलेट केमिकल से भरा टैंक बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। इससे शहर की हवा में जहरीली गैस फैलने लगी थी। इस बेहद ज्वलनशील रसायन का इस्तेमाल प्लास्टिक और नकली दांत बनाने में होता है। इससे फेफड़ों, आँखों और त्वचा में जलन की समस्या हो सकती है। 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। स्पेन में कल मध्य मैड्रिड में हजारों लोगों ने आवास की तेजी से बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन बढ़ती कीमतों के कारण देश में हाल ही में हुई आर्थिक प्रगति के बावजूद कई नागरिक प्रॉपर्टी मार्केट से बाहर हो गए हैं। 2027 के आम चुनावों से पहले आवास संकट प्रधानमंत्री पेत्रो सांचेज के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ते किराए को नियंत्रित करने और किफायती आवास तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए सरकार से और अधिक कड़े कदम उठाने की मांग की है। यूरोपीय संघ के सांख्यिकी कार्यालय यूरोस्टेट के अनुसार 2025 के अंत तक स्पेन में आवास की कीमतों में साल दर साल आधार पर लगभग 13% की वृद्धि हुई है। कांगो के पूर्वी हिस्से में चल रहे इबोला के प्रकोप में अब संदिग्ध मामलों की संख्या 900 से अधिक हो गई है। कांगो के संचार मंत्रालय ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 904 संदिग्ध मामले मिले हैं और 119 लोगों की मौत हुई है। इनमें अधिकतर मामले इटुरी प्रांत से हैं, जहां ये प्रकोप सबसे ज्यादा फैला हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है ये प्रकोप अब कांगो के लिए अधिक जोखिमपूर्ण हो गया है, लेकिन इस बीमारी के दुनिया भर में फैलने का जोखिम अभी भी कम है। बांग्लादेश में वर्ष 2022 से कार्यरत भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कल अपनी विदाई के अवसर पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री रहमान ने दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रणय वर्मा को धन्यवाद दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। श्री प्रणय वर्मा ने कहा कि भारत दोनों देशों के लोगों के हित में बांग्लादेश के साथ काम करने को तैयार है। दोनों पक्षों ने भविष्य में सहयोग के लिए नए क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा की। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रही है। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर मौजूद हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों से ईरान के साथ किसी भी समझौते में जल्दबाजी न करने को कहा। पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय तनाव के बीच आज से वार्षिक 5 दिवसीय हज की शुरुआत और नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का आज से ओस्लो में शुभारंभ। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: विश्व दर्पण समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। सुबह के 10:20 हुए हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के लिए करें जरा सा इंतजार।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
7: सो इजी।
8: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अनवर फिल्म का ये गीत आपने सुना, क्षितिज तारे और शिल्पा राव की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था मिथुन ने और गीत लिखा था हसन कमाल ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी की जमशेदपुर केंद्र से।

अक्सर फिल्म का ये गीत आपने सुना केके और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं, FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

ए दिल है मुश्किल फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना थी, संगीत निर्देशन था प्रीतम का। फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं आशिकी 2 फिल्म से। अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज़ों में है ये गाना। जीत गांगुली का संगीत निर्देशन है और कौसर मुनीर की शब्द रचना। आइए सुनते हैं।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपको सुनवा रहे हैं राज रिबूट फिल्म से। अरिजीत सिंह की आवाज़ में है ये गाना। जीत गांगुली का संगीत निर्देशन है और शब्द रचना है कौसर मुनीर की।

0: और श्रोताओं, इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 MHz पर यह कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। दिन के 11 बजने वाले हैं, सुनिएगा थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में दिए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कहा कि इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों से जुड़े लोगों के अधिकारों को संरक्षित करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। ये स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। IPL क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 874 अंक के उछाल के साथ 76,289, जबकि निफ्टी 264 अंक बढ़कर 23,983 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। इस समय आप आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के साथ हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमें सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपके रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों,

दोस्तों, जैसे एक गुलदस्ते में कई तरह के फूल सजते हैं तभी उसकी खूबसूरती निखरती है, ठीक उसी तरह हम नमस्कार जमशेदपुर के इस कार्यक्रम को हर रोज़ बातों, गीतों और जानकारियों के गुच्छों से सजाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। और हमारे हर कार्यक्रम की सुंदरता और सार्थकता आपसे ही है।

साथियों, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। धरती का आशय ही धारण करने से है। संतान के सत असत आचरण को सबको सहती स्वीकारने वाली जननी की तरह माँ गंगा का जीवन भी सहज और सरल नहीं रहा है, लेकिन हर परिस्थितियों में वो निर्मलता शीतलता का परिवेश बनाते सम विषम भूमि और पर्वतों से अविरल प्रवाहित इसलिए होती रहती हैं क्योंकि वो प्रतिकूलताओं के परिवार के मुखिया भगवान शंकर की संगिनी जो ठहरी।

इसीलिए तो गंगा के लिए ऋषियों ने अपने ग्रंथों में उनकी महत्ता का वर्णन किया है। वाल्मीकि ने गंगाष्टक, शंकराचार्य ने गंगा स्तुति और गोस्वामी तुलसीदास ने गंगा की प्रार्थना की है। माँ गंगा का अवतरण ही उस काल में हुआ जब राजा सगर के वंशज शापित थे। मुक्ति के लिए देव नदी का उन्हें अवलंबन चाहिए था। कथा है कि सगर के शापित वंशजों की मुक्ति के लिए उसी कुल के राजा भगीरथ कठोर तपस्या करते हैं। किसी एक नहीं बल्कि 60,000 तड़पते पूर्वजों के लिए तपस्या का आशय ही है एक पूरे समाज की विषमताओं को समता में बदलने के लिए किया गया महान आंदोलन। इस लोक कल्याण के भावों पर मुक्त होते हैं महादेव। असुरों के राजा बलि के अहंकार को मस्तिष्क के चिंतन से रसातल में करते ही भगवान विष्णु का रूप विराट होता है और 2.5 पग में 1 पग ब्रह्मलोक जाता है। ब्रह्मलोक जाते समय विष्णु के चरण पर अंतरिक्ष में विद्वान विषाणुओं द्वारा हमला होता है। घायल चरण को ब्रह्मलोक में देवमंडल द्वारा प्रक्षालित और संक्रमण मुक्त किया जाता है। ब्रह्मलोक में जल का आधिक्य होने पर ब्रह्मा अपने कमंडल में ले लेते हैं। ब्रह्मा का कमंडल है तो जल का विषाणु तत्व नष्ट होना ही था। इस तरह माँ गंगा का अस्तित्व ब्रह्मलोक में ही विषमताओं को दूर करने से ही होता है। उन्हें महादेव के कोप की विषमता भी झेलनी पड़ी थी। भागीरथ की तपस्या पर गंगा को पृथ्वी पर आने का आदेश दिया जाता है, मगर वो आना इसलिए नहीं चाहती थी कि पृथ्वी पर गंगा को विषैले मन और तन के साथ दूसरे प्रदूषणों को भी झेलना होगा, और वो इनकार कर देती हैं। स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी पर गईं तो हाहाकार मचा देंगी गंगा के अनुसार। इस पर उन्हें भागीरथ पर रिझे महादेव के क्रोध को की तपिश झेलनी पड़ती है। शिव तांडव स्त्रोत के अनुसार शिव की जटाओं में गंगा अग्नि ज्वाला की तरह धक धक धक कर रही है। शिव ने गंगा को जटाओं में उलझा लिया और भागीरथ के साथ जाने की आज्ञा दे दी। ये दिन भी प्रतिकूलताओं का था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, जल के लिए त्राही त्राही होने का समय। वो दिन था मंगलवार का, यानी पृथ्वी पर मंगल करने के लिए विष्णु के 2.5 पग के एवज में गंगोत्री से गंगा सागर तक 2,500 किलोमीटर तक यात्रा के संकल्प का दिन, जिसे माँ गंगा स्वीकार करती हैं। शिव की जटा से निकलने के पूर्व माँ गंगा सहस्त्रों ऋषियों के साथ भगीरथ को देखती हैं तो निश्चिंत भी होती हैं कि नेतृत्व के चिंतन में अगर पवित्रता रहे तो किसी भी प्रदूषण को वो अपनी अविरलता से अवश्य ही दूर कर लेंगी। सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि बहुत ही पावन मानी गई है, क्योंकि यही वो दिन था जब माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इसीलिए इस दिन गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा को माता माना गया है। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर श्रद्धा से गंगा या दूसरी पवित्र नदियों में स्नान करने पर भी माँ गंगा की

बत्ती गुल मीटर चालू। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। संगीतबद्ध किया था सचेत परंपरा ने और गीत लिखा था सिद्धार्थ गरिमा ने।

श्रोताओं, शहर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। औद्योगिक शहर होने और कंक्रीट के बढ़ते जाल के कारण जमशेदपुर तेजी से अर्बन हीट आइलैंड में तब्दील हो रहा है और शहर भट्टी जैसी तप रही है, यानी शहरी इलाकों का तापमान ग्रामीण या बाहरी इलाकों की तुलना में 2 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। ऐसी स्थिति पिछले 4 से 5 सालों में नहीं देखी गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। हवा में नमी सुबह के वक्त 65% और शाम को घटकर 22% तक पहुंच रही है। सूखी और गर्म पछुआ हवाओं ने शहर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे रियल फील 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक का हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो अमूमन मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में गर्मी के बीच बारिश होने से तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता था। अब क्या है अर्बन हीट आइलैंड, इस पर अगर हम बात करें तो शहर की बहुमंजिला इमारतें, कंक्रीट और डामर की सड़कें दिन में सौर विकिरण को बहुत तेज़ी से सोखती हैं। कंक्रीट की संरचनाएं रात के समय उस सूखी हुई गर्मी को धीरे धीरे छोड़ती है। इसे ही

अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में खुली जमीन और पेड़ पौधे होने के कारण शाम होते ही गर्मी वातावरण में वापस चली जाती है और इलाका ठंडा हो जाता है, लेकिन शहरों में फैक्ट्रियों की चिमनियों, लाखों वाहनों, घरों और दफ्तरों में चल रहे एसी से निकलने वाली गर्म गैसों ने शहर के ऊपर एक ऊष्मा कवच बना दिया है, जिससे स्थानीय स्तर पर गर्मी में करीब 15-20% तक का अतिरिक्त इजाफा हुआ है। और दूसरी ओर एक सप्ताह से शहर में भीषण गर्मी पड़ने के कारण अस्पतालों में लू डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हीट वेव के साथ साथ दोपहर बाद या शाम में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज झोंके वाली हवाओं और गरज चमक का दोहरा अलर्ट जारी किया है। 25 मई यानी आज से आंशिक बादल छाने और धूल भरी आंधी या हल्की बूंदाबांदी के कारण पारे में 1 से 2 डिग्री की मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन गर्मी से बड़ी राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं हैं।

हालांकि असली चिंता 25 मई यानी आज से शुरू हो रहे नौतपा और अलनीनो के प्रभाव को लेकर है, जिसके कारण 2 जून तक स्थिति और भयावह होने की आशंका है। वहीं डॉक्टरों ने दोपहर 11 से शाम 4 बजे तक बेवजह घर से बाहर निकलने, लगातार ORS या नींबू पानी का सेवन करने और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है। जमशेदपुर में इन दिनों कंफर्ट इंडेक्स पूरी तरह बिगड़ चुका है। हवा में 49% आर्द्रता के कारण वास्तविक तापमान से कहीं ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, जिससे शरीर का पसीना नहीं सूख रहा है, सिर्फ दिन ही नहीं रातें भी आग उगल रही हैं। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री बढ़कर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। रातें गर्म रहने के कारण कंक्रीट के मकान ठंडे नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोगों की नींद भी पूरी नहीं हो रही है और वे थकान और डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वहीं टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। मांसाहारी जानवरों को संतुलित आहार दिया जा रहा है। शेर, बाघ, भालू, तेंदुआ, लकड़बग्घे के बाड़े के पास कूलर और पंखे लगाए गए हैं और हर घंटे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बाड़े के लिए आसपास के एरिया में स्प्रिंकलर भी लगाया गया है। उनके शरीर को ठंडा रखने के लिए भोजन में खीरा और तरबूज दिया जा रहा है। पानी में घोलकर ORS दिया जा रहा है। पक्षियों के बाड़े में लगातार पानी रहे, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है। उन्हें फल और सब्जियाँ परोसी जा रही हैं। जानवरों को गर्मियों से बचाने की हर संभव कोशिश हो रही है। इस धरती से ही हमने सब कुछ पाया है साथियों, ये धरती है, प्रकृति है, तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के भयावह परिणाम अब सामने आने लगे हैं। ये सब कुछ हमारा ही किया हुआ है जो हम भोग रहे हैं। बहुत कुछ हमने गंवा दिया है, लेकिन जो बचा है उसे जल्द से जल्द संभालना होगा हमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, वाटर बॉडीज़ बचाइए, वर्षा जल का संरक्षण कीजिए, ताकि तपती धरती को और हमें थोड़ी राहत मिले।

साथियों, 25 मई को दुनिया भर में गुमशुदा बच्चों की याद में इंटरनेशनल चिल्ड्रंस मिसिंग डे यानी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2001 में इसे औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई थी। वर्ष 1983 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस की घोषणा की। इसके तहत हर साल लापता होने वाले सैकड़ों बच्चों को याद किया जाता है। इसके कुछ ही साल पहले 25 मई 1979 को 6 वर्षीय एटन पैट्स बस से स्कूल जाते समय अचानक गायब हो गया था। इसके पहले तक लापता बच्चों के मामलों ने शायद ही कभी राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया हो। पहली बार एटन के लापता होने के मामले ने इस समस्या से जूझ रही देश दुनिया का ध्यान खींचा और मीडिया में भूचाल ला दिया। उनके पिता, जो एक पेशेवर फोटोग्राफर थे, उन्होंने बच्चे को खोजने के लिए अपने बेटे की ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हर जगह वितरित की। इसकी वजह से भी इस मामले पर पहली बार मीडिया का ध्यान गया था। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने लापता बच्चों की याद में इस दिवस का पालन करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे दुनिया भर के दूसरे देशों में भी इसकी शुरुआत की गई। औपचारिक रूप से 25 मई 2001 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को मान्यता दी गई थी। ये सब कुछ ICMEC, मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप और यूरोपीय आयोग के संयुक्त प्रयास से संभव हो पाया। दुनिया भर में ऐसे बच्चों की रक्षा की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए हर साल अधिक से अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाते हैं। बच्चों को सुरक्षित रखने को लेकर ICMEC के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे बच्चों की कस्टडी दस्तावेज संभाल कर रखें, बच्चों की हाल की तस्वीरें जरूर रखें, मेडिकल और डेंटल रिकॉर्ड्स को अपडेट रखें, ऑनलाइन सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें, बच्चों की हाल की तस्वीरें अपने पास रखें और बच्चों की देखभाल करने वालों की पृष्ठभूमि की पूरी जांच करें,

छोटे बच्चों को कभी भी कार की सीट पर अकेले ना छोड़ें। जब भी संभव हो बच्चों को उनके नाम वाले कपड़े ना पहनाएं, जितना हो सके उन्हें उनका पता और फ़ोन नंबर ज़रूर सिखाएं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन ICMEC एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है जो बाल अपहरण, यौन शोषण और शोषण को समाप्त करके बच्चों के लिए इस दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए काम कर रहा है। भारत में गुमशुदा बच्चों की स्थिति पर अगर एक नज़र डालें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में कुल 73,138 बच्चे लापता हो गए थे। देश में हर दिन सैकड़ों बच्चे लापता हो जाते हैं। कोविड-19 और इसके प्रभावों के कारण 374 बच्चों के लापता होने के मामले सामने आए। वर्ष 2019 में 90,002 बच्चे लापता हो गए, जबकि 2020 में 97,484 बच्चे लापता हुए। बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें, उन्हें उनके फ़ोन नंबर, पता, ये सब याद करवाएं और बच्चों को अकेला ना छोड़ें।

आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, हेमलता और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में जीने की राह फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन था, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। और श्रोताओं, अब नमस्कार। जमशेदपुर कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद वापस लौटेंगे कुछ और बातचीत और गीत संगीत के सिलसिले के साथ। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: अंतराल के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपके रेडियो सखी श्रीति। श्रोताओं, विश्व थायराइड दिवस प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य थायराइड निदान, उपचार और रोकथाम के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। आज के समय में थायराइड एक बहुत ही आम बीमारी बन चुकी है जो कि सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है।

थायराइड विकार अक्सर धीरे धीरे विकसित होते हैं। थकावट, वजन में बदलाव या मूड में बदलाव जैसे लक्षण अक्सर गलती से तनाव या उम्र बढ़ने के कारण माने जाते हैं, जिसे निदान और उपचार में देरी होती जाती है। भारतीय थायराइड सोसाइटी के अनुसार भारत में लगभग 42 मिलियन लोग थायराइड की समस्याओं से पीड़ित हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिससे इन विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसे संबोधित करने के लिए ही हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, ताकि थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जल्दी पता लगाने और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। विश्व थायराइड दिवस की शुरुआत सबसे पहले अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA द्वारा की गई थी और अब इसे दुनिया भर में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। ये थायराइड की स्थिति से पीड़ित लोगों की बढ़ती संख्या पर बढ़ती चिंता को संबोधित करने के लिए बनाया गया था, जिनमें से कई जागरूकता की कमी के कारण निदान नहीं किए जाते हैं। इस दिन का महत्व थायराइड स्वास्थ्य पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता में निहित है। ये व्यक्तियों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों दोनों को थायराइड फंक्शन के महत्व को समझने, शुरुआती लक्षणों को पहचानने और थायराइड विकारों से पीड़ित लोगों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। थायराइड एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है, जो गर्दन के सामने स्वर यंत्र यानी वोकल कॉर्ड के ठीक नीचे स्थित होती है। ये अंतःस्रावी तंत्र का एक हिस्सा है और शरीर के कई प्रमुख कार्यों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ग्रंथि थायरोक्सिन T4 और ट्राईआयोडोथायोनिन T3 जैसे हार्मोन्स का उत्पादन करती है, जो शरीर द्वारा ऊर्जा के उपयोग को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये हार्मोन हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशियों और पाचन तंत्र सहित लगभग हर अंग प्रणाली को प्रभावित करते हैं। वे शरीर के तापमान, वजन, मनोदशा और मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने में भी मदद करते हैं। थायराइड हार्मोन के स्तर में मामूली बदलाव भी शरीर के पूरे कामकाज में उल्लेखनीय बदलाव ला सकता है। हार्मोन को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका के कारण थायराइड शरीर में कई अंगों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, जिससे पूरे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित कार्य आवश्यक हो जाता है इसका। जब ग्रंथि बहुत अधिक या बहुत कम हार्मोन का उत्पादन करती है तो इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करने वाले विकार हो सकते हैं। थायराइड विकार तब होते हैं जब ग्रंथि अपने हार्मोन का बहुत अधिक या बहुत कम उत्पादन करती है, जिससे असंतुलन होता है। चूंकि थायराइड हार्मोन शरीर में कई प्रमुख कार्यों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए ये असंतुलन अलग अलग अंग प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है। इसमें हृदय, मस्तिष्क, पाचन तंत्र, त्वचा और प्रजनन अंग शामिल है, जिससे थायराइड विकार मल्टी सिस्टम रोग बन जाता है। सबसे आम बात यह है कि थायराइड विकारों को समझने से शुरुआती पहचान और समय पर उपचार में मदद मिल सकती है।

शब्बीर कुमार की आवाज़ में मोहब्बत की आग फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत लिखा था SH बिहारी ने।

श्रोताओं, थायराइड विकार के बारे में हम बात कर रहे थे इस गाने से पहले। तो थायराइड विकार जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म

एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायरॉयड ग्रंथि पर्याप्त थायरॉयड हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। और हाशिमोटो थायरॉयडिटिस एक ऑटो इम्यून स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली थायरॉयड ग्रंथि पर हमला करती है जिससे हार्मोन बनाने की इसकी क्षमता कम हो जाती है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे आम कारण है। हाशिमोटो थायरॉयडिटिस एक ऑटो इम्यून स्थिति है और अगर इसके लक्षणों पर हम ध्यान दें तो गंडमाला यानी बढ़े हुए थायरॉयड ग्लैंड दिखाई देते हैं, थकान महसूस होती है, हल्का वजन बढ़ता है, अवसाद, धीमी हृदय गति, कब्ज, ठंड के प्रति असहिष्णुता, याददाश्त संबंधी समस्याएं सामने आती है, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है जैसे ब्रेन फॉग इसके लक्षणों में शामिल है। हाइपरथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायरॉयड ग्रंथि अधिक मात्रा में हार्मोन बनाती है जिससे शरीर के कई कार्य तेज हो जाते हैं। इस स्थिति के कारण मेटाबॉलिज्म बहुत अधिक सक्रिय हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में बढ़ी हुई गतिविधि से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं जैसे अस्पष्टीकृत वजन घटना, तेज या अनियमित दिल की धड़कन, घबराहट या चिड़चिड़ापन, पसीना ज़्यादा आना, कांपते हाथ, नींद ना आना और बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होना। ग्रेव्स रोग एक ऑटो इम्यून विकार है और हाइपरथायरॉयडिज्म के सबसे आम कारणों में से एक है। थायरॉयड नोड्यूल गांठें होती हैं जो थायरॉयड ग्रंथि में विकसित होती हैं। अधिकांशतः ये गैर कैंसरयुक्त होती हैं लेकिन कुछ समय के साथ अतिरिक्त हार्मोन उत्पन्न कर सकती हैं या कैंसरयुक्त भी हो सकती हैं। गंडमाला थायरॉयड ग्रंथि का बढ़ना है जो हाइपरथायरॉयड और हाइपोथायरॉयड दोनों स्थितियों में हो सकता है। थायरॉयड कैंसर एक यूं तो एक दुर्लभ स्थिति है लेकिन ये तब हो सकता है जब थायरॉयड ग्रंथि में असामान्य कोशिकाएं बढ़ती हैं। ये बीमारी अक्सर धीमी गति से बढ़ती है और इसके शुरुआती चरणों में लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए समय रहते इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लक्षणों में शामिल हैं गर्दन में दर्द रहित गांठ या सूजन, आवाज़ का बैठना या आवाज़ में परिवर्तन, निगलने में कठिनाई, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, गर्दन या गले में दर्द। थायरॉयड विकार किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं लेकिन कुछ खास लोगों में थायरॉयड की समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थायरॉयड विकार विकसित होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति जैसे जीवन के कुछ चरणों के दौरान जोखिम विशेष रूप से ज़्यादा बढ़ जाता है। थायरॉयड की समस्या यूं तो किसी भी उम्र में हो सकती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसका जोखिम बढ़ जाता है। थायरॉयड रोग का पारिवारिक इतिहास थायरॉयड विकार विकसित होने की संभावना को बढ़ा सकता है। कुछ ऑटो इम्यून स्थितियां जैसे रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, ल्यूपस या टाइप 1 मधुमेह जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों वाले लोगों में ऑटो इम्यून थायरॉयड विकार विकसित होने का जोखिम अधिक रहता है। जो लोग विकिरण के संपर्क में आए हैं, खासकर वे लोग जो गर्दन या सिर पर विकिरण चिकित्सा करवा चुके हैं, उनमें भी थायरॉयड कैंसर सहित थायरॉयड विकारों का जोखिम बढ़ जाता है। आयोडीन थायरॉयड हार्मोन के उत्पादन के लिए ज़रूरी है। जिन क्षेत्रों में आयोडीन की कमी आम है वहाँ लोगों को थायरॉयड की समस्या जैसे कि घेंघा रोग होने का जोखिम अधिक हो सकता है। धूम्रपान से थायरॉयड की समस्या, खासतौर पर ग्रेव्स रोग और थायरॉयड नेत्र रोग विकसित होने का जोखिम जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा हार्मोनल परिवर्तन और कुछ चिकित्सा स्थितियाँ भी थायरॉयड के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। थायरॉयड विकार के निदान में पहला कदम आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ विस्तृत चर्चा करना है। वे थकान, वजन में बदलाव, मूड में बदलाव और ऊर्जा के स्तर में बदलाव जैसे लक्षणों के बारे में आपसे पूछेंगे। आपके परिवार में थायरॉयड से संबंधित किसी भी समस्या के इतिहास के साथ साथ किसी भी अन्य ऑटो इम्यून स्थितियों पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही शारीरिक जाँच, TSH टेस्ट, फ्री T3 और T4 टेस्ट किए जाएंगे। थायरॉयड एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाता है। थायरॉयड विकार को जानने के लिए थायरॉयड एंटीबॉडी टेस्ट, थायरॉयड उत्तेजक इम्यूनोग्लोब्यूलिन यानी TSI परीक्षण भी किया जाता है थायरॉयड विकार को समझने के लिए। इसके अलावा थायरॉयड का अल्ट्रासाउंड, ज़रूरत पड़ने पर फाइन नीडल एस्पिरेशन FNA बायोप्सी भी किया जा सकता है। इसके अलावा रेडियोधर्मी आयोडीन अवशोषण परीक्षण भी किया जाता है थायरॉयड को समझने के लिए। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए सबसे आम उपचार थायरॉयड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। कुल मिलाकर दोस्तों,
समय रहते लक्षणों की अनदेखी न करते हुए उनकी पहचान

श्रोताओं, महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का आज रास बिहारी बोस की आज जयंती है। रास बिहारी बोस एक महान भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कदर आंदोलन चलाया और बाद में आज़ाद हिंद फौज का गठन कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उसकी कमान सौंपी। 25 मई 1886 को बंगाल के बर्धमान जिले में उनका जन्म हुआ। 1912 में दिल्ली में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की ऐतिहासिक योजना रास बिहारी बोस ने ही बनाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए गदर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार बने थे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस। गिरफ्तारी से बचने के लिए 1915 में वे जापान चले गए। वहां उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में उनका देहांत हो गया। उनके योगदान के सम्मान में जापान सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस को हम शत शत नमन करते हैं।

द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और एआर रहमान की आवाज़ों में। गीत लिखा था समीर ने और संगीतबद्ध किया था एआर रहमान ने। और इसी गाने के साथ नमस्कार जमशेदपुर का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। दीजिए अपनी रेडियो सखी श्रीति को इजाज़त। नमस्कार।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का

0: मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
1: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपए और डीजल में 2.71 रूपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपए और डीजल 95.20 रूपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हैं। इसी कड़ी में लेकर हाजिर है भावगीत कार्यक्रम। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, और कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आपकी रेडियो सखी श्रीति। स्वीकार कीजिए स्नेह भरा नमस्कार।

दिल की सूखी ज़मीन पर अभी अभी मोहब्बत का सैलाब आया है। बंजर सी इस ज़मीन पर अब बहारों की धड़कनें सुनाई देने लगी हैं, ऐसे जैसे मानो अब जीना चाहती हूँ। यूँ तो पहले भी जी रहे थे, ज़िंदगी में कोई कमी भी नहीं थी, मगर जब से तुम मिले हो तो समझ आता है कि वो ज़िंदगी तो थी, मगर ज़िंदगी में ज़िंदगी तो थी ही नहीं।

उनसे मिलने के बाद तो दीवाने पागल से दिल को लाख समझाओ लाख बार मनाओ, वो नहीं सुनता, बस अपनी ही मनमर्जी करता है। ठीक उस पिंजरे के पंछी की तरह जिसे खुला आसमान अब नहीं चाहिए, वो उसी पिंजरे में रहकर खुला आसमान देखना चाहता है। अब वही पिंजरा उसका घर है, पूरी दुनिया है, क्योंकि इस उम्र कैद से उसे अब मोहब्बत जो हो गई है।

तेरे ही कदमों के निशान चुनता हुआ रह गुजर बनाता हूँ। अब इसमें फूल बिछे हों कि काठों की चुभन हो, सब मंजूर है। तेरे होने से ही तो मेरा होना भी खास हो जाता है, वरना तो हर शय फजूल है। अब तू दर्द दे, दवा दे, गम दे या खुशी, सब कबूल है।

जब तेरी ही राह चलना कबूल कर लिया तो मेरी सारी मोहब्बत पर अब तेरा हक हुआ। मेरा सफ़र भी तू है और सफ़र की मंजिल भी तू ही है। मेरी हर कहानी में तू शामिल है और आखिरी सांस तक रहेगा। तू भी अपनी कहानी में मेरा जिक्र ज़रूर रखना, मोहब्बत ना सही मगर मेरी फ़िक्र ज़रूर करना।

जिस दिलबर का दिल पर कब्जा हो, हर आती जाती सांस जिसका जिक्र करती हो, रूठ जाने पर अक्सर उसे जुबां जाने का कहती है और निगाहों में रुक जाने की इल्तिजा होती है।

जिन फिल्मों के गाने आज आपने इस कार्यक्रम में सुने वो फिल्में थीं 21, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, हक, डंकी और दो पत्ती। आवाज़ें थीं गानों के लिए अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादाब फरीदी, अल्तमश फरीदी, अरमान खान, विशाल मिश्रा और परंपरा टंडन की। संगीतकार थे सचिन जिगर, प्रीतम, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, कौशल किशोर, इरशाद कामिल और कौसर मुनीर।

आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 12:30 बस होने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राग पटदीप में पंडित भजन सोपुरी का संतूर वादन।

राग बटदीप में पंडित भजन सोपुरी का संतूर वादन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से समाचारों का प्रसारण होगा। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आपके साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण

0: और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first round of the civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NEET examination, saying it was sad that the National Testing Agency, NTA, had not learnt any lesson from the earlier paper leak controversy. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe sought responses from the Centre, the NTA and the CBI on petitions demanding replacement of the testing agency with a more robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayashankar said India and the US must always be clear about zero tolerance for terrorism.
3: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge.
2: The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio will participate in the meeting. External Affairs Minister S. Jayashankar will preside over the meeting. The External Affairs Ministry said leaders will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing initiatives, and other international issues of mutual concern. The Quad, comprising India, the US, Australia, and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security, and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. Millions of pilgrims from across the world, including India, are converging at Mina in Saudi Arabia as the annual five-day Hajj pilgrimage began today amidst regional tension in West Asia. The pilgrims began their journey from the holy city of Makkah to assemble in the tent city of Mina. Nearly 1,75,000 pilgrims from India are participating in this year's Hajj pilgrimage. Earlier, Minority Affairs Minister Kiran Rijiju reiterated the government's commitment to ensuring a smooth, safe and comfortable Hajj experience. With the Hajj Suvidha mobile app, information and grievance reporting services are being provided to Indian pilgrims. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Kolkata Knight Riders by 40 runs in Kolkata last night. Delhi Capitals set a target of 204 runs for Kolkata Knight Riders. In reply, Kolkata Knight Riders scored only 163 runs in 18.4 overs. Kuldeep Yadav was declared player of the match. Earlier in the day, in another fixture, Rajasthan Royals defeated hosts Mumbai Indians by 30 runs at Wankhede Stadium. Put into bat, Rajasthan Royals posted 205 runs for the loss of 8 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, chasing a target of 206 runs, Mumbai Indians managed to score 175 runs for the loss of 9 wickets in their allotted 20 overs. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heat wave conditions today in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab. Parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha and Telangana are also likely to witness severe heat wave conditions during the day. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.1% higher in afternoon trade today amid hopes of a possible agreement to end the US-Iran conflict. The Sensex surged 845 points to 76,260, while the Nifty climbed 244 points to 23,964 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैंसी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक करेंगे मैराथन बैठक। आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की होगी समीक्षा। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट भर्ती मामले में दिया बड़ा फैसला। विज्ञापन की शर्त रद्द करते हुए कहा, वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं हो सकती विज्ञापन की शर्तें। राज्य सरकार ने की गांवों के पारंपरिक ज्ञान को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच दिलाने की पहल। युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर सियासी संग्राम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया मुनाफाखोरी का आरोप। भाजपा ने कहा, वैश्विक बाजार मूल्यों से तय होती है कीमतें। और हॉकी, झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी ने राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉयलॉस को सर्वसम्मति से दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक राज्य के विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठकों में आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग, 26 मई को स्कूली शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, जबकि 27 मई को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा की जाएगी। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत

0: ने विज्ञापन की उस शर्त को रद्द कर दिया है जिसमें स्नातक स्तर पर संबंधित विषयों को 2 या 3 वर्ष तक पढ़ने की अनिवार्यता तय की गई थी। वहीं हाई कोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी का वेतनमान और सेवा शर्तें उसके औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख से नहीं बल्कि उस विज्ञापन और चयन प्रक्रिया की तारीख से तय होंगी जिसके तहत भर्ती शुरू की गई थी। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य गांवों में मौजूद पारंपरिक ज्ञान और नवाचारों को नई पहचान देना है। एक रिपोर्ट।
1: झारखंड सरकार ने युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य गाँवों की पारंपरिक जानकारी और नवाचारों को नई पहचान देना है। ये 2 माह का क्रेडिट आधारित इंटर्नशिप कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। योजना के तहत छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान 10,000 रूपए तक का स्टाइपेंड, शैक्षणिक क्रेडिट और विशेषज्ञों की मेंटरशिप दी जाएगी। कार्यक्रम में झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों के 17,000 से अधिक छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इंटर्नशिप के दौरान छात्र पंचायतों में जाकर स्थानीय नवाचार, पारंपरिक ज्ञान और ग्रामीण उत्पादों का अध्ययन करेंगे। योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों को राज्य स्तर पर 1,25,000 रूपए तक के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। इसको लेकर राज्य में सियासी संग्राम जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने सरकार पर आम लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है।
2: जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं, अपने 2-4 उद्योगपति मित्रों से मतलब है, कैसे उनका मुनाफा बढ़े, कैसे उनकी जेब भारी हो। जो रिफाइंड ऑयल है, डीजल पेट्रोल, उसे हम निर्यात कर रहे हैं। वारे वाह, विडंबना देख, अपने देश में हम महंगा करते जा रहे हैं। इसका असर क्या होगा? आम रोजमर्रा की वस्तुएं आसमान छूने लगेंगी।
0: वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दामों की वृद्धि के लिए कांग्रेस की पूर्व की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार हॉर्मूज पर नजर रखे हुए है, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।
3: पेट्रोल की कीमतें वैश्विक बाजार के हिसाब से तय होती हैं, ये किसकी देन है? ये सरकार कांग्रेस की थी उस समय, वरना उस समय तक तो सरकारें कंट्रोल करती थी। उसके बाद ऑयल कंपनीज तेल पर नियंत्रण करने लगी प्राइसेस पे। तो हम मानते हैं कि ये डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हम गल्फ ऑफ हॉर्मूज पर लगातार नजर बनाए हुए। जैसे ही वहाँ स्थितियाँ बेहतर होंगी, ये प्राइसेस फिर से पुराने दर पे आ जाएंगे।
0: धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट खोरों और अस्वच्छ तरीके से खाना बेचने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने बताया कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील के जरिए मौके पर ही स्ट्रीट फूड, मिठाई की दुकानों और होटलों के खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है।
4: टेस्टिंग व्हीकल मंगाया गया है, साथ में दुनिया अनलिस्ट लोग भी आए हुए हैं। स्पॉट पे दुकान है, टेलीकॉम चेन है, सभी में ऑन द स्पॉट सैंपल का जांच किया जाएगा और इसी क्रम

0: में आज हम लोग यहाँ पर सराइडला से हम लोग स्टार्ट किया है और अगले 2 दिन तक पूरे धनबाद जिले में यह अभियान जारी रहेगा।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 953 अंक की उछाल के साथ 76,368 जबकि निफ्टी 268 अंक बढ़कर 23,987 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपए प्रति किलो है। रांची में आयोजित हॉकी झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी की बैठक में राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉयलॉज को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में जिला इकाइयों को महिला और पुरुष खिलाड़ियों की सूची जमा करने तथा संगठनात्मक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। जमशेदपुर में तृतीय झारखंड स्टेट योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 5 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग तक के प्रतिभागियों ने 12 कैटेगरी में योगासनों का प्रदर्शन किया। दिव्यांग बच्चों की स्टार कैटेगरी और महिलाओं की मॉम्स कैटेगरी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम का उद्घाटन सरयू राय, आलोक मल्होत्रा और मनोज सत्यनारायण ने किया। रांची जिला कबड्डी संघ की ओर से आयोजित 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कबड्डी प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में करीब 50 बालक और बालिका खिलाड़ियों को प्रशिक्षक प्रदीप तिर्की ने कबड्डी के महत्वपूर्ण डिफेंस कौशल एंकल होल्ड की तकनीक सिखाई। संघ के अनुसार आगामी दिनों में खिलाड़ियों को विभिन्न तकनीकी कौशल और फिटनेस से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक करेंगे मैराथन बैठक। आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की होगी समीक्षा। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट भर्ती मामले में दिया बड़ा फैसला। विज्ञापन की शर्त रद्द करते हुए कहा, वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं हो सकती विज्ञापन की शर्तें। राज्य सरकार ने की गांवों के पारंपरिक ज्ञान को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच दिलाने की पहल। युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर सियासी संग्राम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया मुनाफाखोरी का आरोप। भाजपा ने कहा, वैश्विक बाजार मूल्यों से तय होती है कीमतें। और हॉकी झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी ने राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉयलॉज को सर्वसम्मति से दी मंजूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से समाचारों का प्रसारण हो रहा था। अभी हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
6: ज्ञान विज्ञान
7: इतिहास के पन्नों से,
8: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
9: मौसम का मिजाज,
6: अपने शहर की खबरें,
8: बातों मुलाकातों के साथ
9: सुरीला मनोरंजन
6: और भी बहुत कुछ।
9: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
8: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
5: नमस्कार जमशेदपुर।
3: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
10: हेलो डॉक्टर,
5: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
10: हेलो डॉक्टर।
5: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
10: हेलो डॉक्टर,
11: जलवायु और लिंग, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। गांव की महिलाएं जो खेती में काम करती हैं इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अक्सर उनकी बात सुनी ही नहीं जाती और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपदा के वक्त जैसे बाढ़ या सूखे में कैंप्स या आश्रय में उनके साथ यौन हिंसा का खतरा भी होता है। लेकिन इन्हीं महिलाओं के पास एक ऐसा ज्ञान भी होता है जो जलवायु संकट से लड़ने में मदद कर सकता है। बस जरूरत है उन्हें योजनाओं और फैसलों में शामिल करने की। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में हर 3 में से लगभग 1 महिला के अपने जीवन काल में शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।

कुछ आवश्यक संदेशों के बाद फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों। FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्देशक और राजनेता सुनील दत्त की आज पुण्यतिथि है। बस कंडक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले बलराज दत्त उर्फ सुनील दत्त ने 5 दशकों के करियर में 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। मदर इंडिया जैसी फिल्मों और उनके सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेडियो जॉकी के रूप में की थी। उनकी सबसे मशहूर फिल्मों में 1957 की मदर इंडिया, 1965 की वक्त, मिलन जो 1967 में आई थी, हमराज ये भी 1967 में आई थी, और 1963 की फिल्म मुझे जीने दो शामिल हैं। उन्हें मुझे जीने दो और खानदान फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। 1968 में उन्हें कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मदर इंडिया के सेट पर लगी भीषण आग में कूदकर सुनील दत्त ने अपनी जान की बाजी लगाकर नरगिस की जान बचाई थी। इस घटना के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए और 1958 में दोनों ने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। फिल्मों के बाद वो राजनीति में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। वो मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद चुने गए। मनमोहन सिंह की सरकार में वे युवा मामले और खेल मंत्री भी रहे। वे हमेशा से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के समर्थक रहे। 1987 में पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने अमृतसर से मुंबई तक एक लंबी शांति पदयात्रा निकाली। सुनील दत्त के जीवन, उनके संघर्ष और उनके बेहतरीन सिनेमाई सफर को हम आज उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं और नमन करते हैं उन्हें। और आइए सुनते हैं उनकी अभिनीत सुपर डुपर हिट फिल्म मदर इंडिया फिल्म का ये गाना।

मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम की आवाज़ों में मदर इंडिया फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीतबद्ध किया था नौशाद ने और गीत लिखा था शकील बदायूनी ने। फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गाना आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज़ में शान फिल्म से। संगीत आर डी बर्मन का है, शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

शुक्रिया, करम, मेहरबानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में तोहफा फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। बप्पी लहरी का संगीत निर्देशन था इन दीपर का लिखा हुआ गीत। आइए अब आपको फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गाना सुनवाते हैं पुकार फिल्म से। आशा भोसले किशोर कुमार और आर डी बर्मन की आवाज़ें हैं। आर डी बर्मन का संगीत निर्देशन है, गीत लिखा है गुलशन बावरा ने।

आशा भोसले और आरडी बर्मन की आवाज़ों में, आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म अपना देश से। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। दिन के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XH या AR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा, पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार अभी आप सुन रहे थे। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

कुछ आवश्यक संदेशों के बाद हाजिर हैं हम कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का। इस संगीत में सफ़र की हम सफ़र, मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत आज हम करेंगे करण जौहर।

फिल्म करण जौहर निर्मित फिल्म के गाने से। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्देशकों, निर्माताओं और टेलीविजन होस्ट में एक हैं करण जौहर। धर्मा प्रोडक्शंस के प्रमुख के रूप में वे कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और माय नेम इज खान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्देशन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। आज ही के दिन सन 1972 को मुंबई महाराष्ट्र में जन्म हुआ करण जौहर का। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ग्रीन लॉन्स हाई स्कूल मुंबई से की और एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1998 में सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। उनके द्वारा निर्देशित दूसरी लोकप्रिय फिल्मों में कभी खुशी कभी गम, जो वर्ष 2001 में आई थी, कभी अलविदा ना कहना, जो वर्ष 2006 में आई, वर्ष 2010 की माय नेम इज़ खान और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 की, और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 में आई थी ये फिल्म शामिल हैं। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले उन्होंने कई शानदार फिल्मों का निर्माण किया है और कई निर्देशकों, अभिनेताओं और टेक्नीशियंस को बॉलीवुड में लॉन्च भी किया है। फिल्मों में निर्देशन के अलावा उन्होंने दिल तो पागल है, मोहब्बतें और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी कई फिल्मों में सितारों के लिए कॉस्ट्यूम्स भी डिज़ाइन किए हैं। उनका एक सेलिब्रिटी टॉक शो बेहद मशहूर हुआ, कॉफ़ी विद करण, जिसमें वे बॉलीवुड सितारों से उनकी निजी जिंदगी और इंडस्ट्री के राज पर खुलकर बात करते हैं। वे झलक दिखला जा, नच बलिए और इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे कई टीवी डांस टैलेंट शोज के जज भी रह चुके हैं। करण जौहर अपनी भव्य फिल्मों, सेट डिज़ाइन और अपने खास फैशन सेंस के लिए जाने जाते हैं। करण जौहर को जन्मदिन की और आगे आने वाले स्वस्थ सफलतम जीवन की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए आइए सुने उनकी पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गाना।

कुमार सानू की आवाज़ में इम्तिहान फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन था अनु मलिक का, गीत लिखा था फैज़ अनवर ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं जीत फिल्म का गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का है, शब्द रचना है समीर की।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मरणोपरांत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा पर राज्य के राजनीतिक दलों ने गहरी खुशी जताई है। झामुमो नेता मनोज पांडे ने इसे आदिवासियों और झारखंड की अस्मिता की जीत बताया है।
1: उल्लास का दिन, हालांकि गुरु जी इससे भी ज्यादा के हकदार थे। हम लोगों ने तो भारत रत्न की मांग की थी, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि धरती पर कोई दूसरा अवतरित होगा इस तरह की करिश्माई नेतृत्व।
0: इधर भाजपा नेताओं ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गुरुजी के संघर्षों को सराहा है।
2: झारखंड आंदोलन में उनकी महती भूमिका थी और झारखंड आंदोलन से भी पहले वो शराबबंदी के खिलाफ उनका जबरदस्त आंदोलन था, जिस शराबबंदी को आज हेमंत सोरेन ने नकार दिया और शराब को बेचने के लिए टारगेट फिक्स किया जा रहा। गुरुजी के उसूलों को उन्होंने भूल दिया, लेकिन केंद्र सरकार नहीं भूली और पद्म भूषण का सम्मान दिया। महाजनी प्रथा के खिलाफ भी गुरुजी ने जबरदस्त संघर्ष किया था।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवादों से कोई सबक नहीं सीखा है। यह 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में परीक्षा कराने के लिए किसी अधिक मजबूत और स्वतंत्र संस्था को लाने की मांग की गई है। जमशेदपुर के घागीडीह सेंट्रल जेल में बंदियों के लिए झारखंड का पहला ओपन जिम बनेगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जगह चुन ली है। जेल अधीक्षक और एडीएम ने इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है। उपायुक्त की मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। इससे जेल के 1,568 बंदियों को फिट रहने में मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी पुलिस ने आगामी बकरीद त्योहार को लेकर कचहरी मैदान में मॉक ड्रिल किया। पुलिस कप्तान ऋषभ गर्ग ने बताया कि शहर में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। जगह जगह मजिस्ट्रेट, महिला बटालियन और पुलिस बल तैनात रहेंगे। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
3: 20 तारीख को बकरीद का पर्व मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने आज जो है राइट मॉक ड्रिल का एक अभ्यास किया था और इसी में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वह टीयर गैस शेल हो या फिर स्टन ग्रेनेड हो, उन सभी का भी अभ्यास किया गया और उसकी देखा गया कि कारगर वो कितना है। सभी की कार्रवाई अच्छी थी।

0: और हम लोग आशा करते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग बकरीद का पर्व मनाएंगे।
1: सिमडेगा के पाकरटार थाना पुलिस ने साइबर ठगी मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए संदिग्ध मोबाइल नंबर की जांच की थी। एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि आरोपी जामताड़ा के ठगों को सिम और एटीएम कार्ड भेजते थे। पुलिस ने इनके पास से एटीएम, सिम, मोबाइल और बाइक बरामद की है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, रांची, खूंटी और गुमला जिलों में आज वज्रपात की आशंका जताई है। इन इलाकों में गरज के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने नया इतिहास रच दिया है। इस प्रतियोगिता में गुरिंदर सिंह ने 100 मीटर, विशाल टीके ने 400 मीटर और तेजस्वी शंकर ने डेकैथलॉन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। शानदार प्रदर्शन के दम पर गुरिंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, रवीना और सीमा सहित कुल 12 एथलीटों ने आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही कई खिलाड़ियों ने नया मीट रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हैं। दिन के 3 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: ये सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली, पोस्ट खेरथा बाजार, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
3: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं।

0: और संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है, जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र

विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्धशीर बुरजोरजी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको।
5: फेंका जनाब।
6: अरे ये क्या हुआ?
5: ये क्या हुआ? अरे बचो।
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?

0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
1: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
3: सही में
2: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
4: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
5: May I come in, sir?
1: Yes, come in.
5: Sir.
1: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
5: सर।
1: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
5: Thank you, sir. Sir, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, कहो।
5: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
1: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
5: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
1: गो अहेड यंग मैन।
5: सर।
4: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
4: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
6: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
7: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
6: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
8: जी जनाब।
1: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
9: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
7: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
6: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
7: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
6: फायर।
10: खा, खा, खा, खा।
7: का टैंक तो गया।
6: गुड, तो अब निशाना लगा उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
7: सर, ये टैंक तो गया।
6: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। Go and send them to hell! Fire!
7: Yes, sir!
4: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
0: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
4: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया, भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 MHz पर। दिन के 3:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। उपशास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुने उस्ताद अमजद अली खान की सरूद पर बजाई ये पहाड़ी धुन।

पंडित शिव कुमार शर्मा की संतूर पर बजाई ये मिश्रक हम आज धुन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम है लोकगीतों का, सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है झारखंड के लोकगीत। इस कार्यक्रम को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को कृष्णा कावेरी का प्यार भरा जोहार। श्रोताओं, लीजिए आज सुनिए संताली लोकगीत। कलाकार हैं स्टीफन सोरेन।
1: कार्यक्रम कृषि जगत में लोकगीत सुनने वाले सभी श्रोता मित्रों को अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टुड्डू का जोहार। श्रोता मित्रों, आज हम आपको स्टीफन सोरेन एवं साथियों की आवाज में संताली लोकगीत सुनाएंगे, जिसमें कटनी से संबंधित लोकगीतों को हमने शामिल किया है। प्रथम प्रस्तुत गीत में कहा गया है कि बोए हुए धन को समय अनुसार धूप वर्षा मिलते रहने से एवं काम समय पर होने से धान का पौधे का बढ़ना सुनिश्चित हो जाता है। धान बढ़कर पक जाने से उसे काटकर घर ले आने की तैयारी की जाती है। उपयुक्त गीत में इसकी ही झलक मिलती है।

प्रस्तुत गीत में दर्शाया गया है कि ग्राम प्रधान के अनाज भंडारण गृह में अनाज का जो ढेर है वो बिल्कुल विशाल कय हाथी के समान दिखता है। अब वहाँ चुटिया व चूहों की भरमार है। चूंकि खाने हेतु उन्हें तदात मात्रा में अनाज सुनिश्चित है, वे सभी अपने को धनवान समझने लगे हैं। उनके उछल कूद व चहलकदमी से बिल्ला महाराज भी डरकर शांत बैठे हुए हैं। अर्थात ग्रामीणों को अब माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है, वे काफी हर्षित हैं। लंबे समय तक उन्हें अब अकाल भुखमरी की चिंता नहीं सताएगी। उनके जोश, लगन, ईमानदारी के समक्ष अकाल भुखमरी को भी अब चिंता होने लगी है।

आवाज में संताली लोकगीत जो कि कटनी से संबंधित है। अब आइए सुनते हैं इनकी अगली प्रस्तुति। इस गीत में कहा गया है कि खेत खलिहान का सारा कार्य संपन्न होने व अच्छी फसल की प्राप्ति से कृषक गण काफी हर्षोल्लास से सराबोर हैं। नृत्य अखाड़े में वे खाद्य व पेय पदार्थ की कमी को दरकिनार करते हुए अर्थात भूख प्यास को भूलकर केवल मात्र खुशी में मग्न रहते हैं। प्रस्तुत गीत में भी यही दर्शाया गया है कि किस प्रकार कृषकों में एक दूसरे को सहयोग करने की भावना है। वे किसी भी काम को समूह में करना ही अधिक पसंद करते हैं।

0: के साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।
1: आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनिएगा मुख्य समाचार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोहरदगा के सलगी चूल्हा पानी में आयोजित देवनंद दामोदर महोत्सव में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना कर राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सरयू राय ने की। पलामू के चियांकी हवाई अड्डे से उड़ान शुरू न होने का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा केंद्र को जरूरी प्रस्ताव न भेजना है। लोकसभा में सांसद विष्णुदयाल राम द्वारा उठाए गए सवाल पर नागरिक विमानन केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह जवाब दिया है। गुमला के जिला उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने पीएम जनमन सहित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की एक बड़ी समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी लंबित काम तय समय के भीतर पूरे किए जाएं। पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने जिले के स्कूलों की व्यवस्था, छात्रवृत्ति, पोशाक, किताब और मिड डे मील जैसी बड़ी योजनाओं में काम की जांच की। हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां रह रहे छात्रों से सीधा बात कर उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत समाधान के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, रांची, खूंटी और गुमला जिलों में आज वज्रपात की आशंका जताई है। इन इलाकों में गरज के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रहे राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में आज महिलाओं के 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पुरुष वर्ग की 500 मीटर दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामम्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4:02 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

बर्फी फिल्म का गाना था ये अरिजीत सिंह की आवाज़ में। प्रीतम का संगीत निर्देशन था सईद कादरी की शब्द रचना। आइए अब आपको सुनवाते हैं सर फिल्म का गाना कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ों में। अनु मलिक का संगीत निर्देशन है, कतिल शिफाई का लिखा हुआ गीत।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में, शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में, विधु विनोद चोपड़ा का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे वजीर फिल्म से। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में खिलाड़ी फिल्म का ये गाना। जतिन ललित का संगीत निर्देशन है, गीत लिखा है अनवर सागर ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ों में कलंक फिल्म का गाना। संगीत निर्देशन प्रीतम का है, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। आप ये गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए और फिलहाल मुझे यानी श्रीति को फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम से अब इजाज़त दीजिए। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम जारी रहेगा फिलहाल और कार्यक्रम का अगला भाग सुनिएगा अपनी रेडियो सखी मीरा के साथ। अभी सुनिए कलंक फिल्म का ये गाना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ों में।

फिल्म कलंक का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुन रहे हैं आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म जंगल का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें थी। जलीश राशिद के बोल और संगीत था साजिद वाजिद का।

0: फिजा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें थी। गीत लिखा था तेजपाल कौर ने और संगीत अनु मलिक का था। श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 MHz पर। सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: मन करता है तुमसे बातें करता रहूं।

कयामत, इसी फिल्म का ये गीत आपने सुना। अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें थी। गीत के बोल समीर ने लिखे थे और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।

ब्रह्मास्त्र फिल्म का ये गीत आपने सुना, अरिजीत सिंह की आवाज थी, बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत प्रीतम ने बनाई थी। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसे फिल्म का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजें थी। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और संगीत जतिन ललित ने बनाई थी। इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी की रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में वित्त और वाणिज्य कर विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर गंभीर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट को सही तरीके से लागू करने और कमाई बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने सहित कई जरूरी सुधारों के सुझाव दिए हैं। गिरिडीह नगर निगम के बोर्ड की दूसरी बड़ी बैठक आज नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में पूरी हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, मेयर प्रमिला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार और सभी वार्ड पार्षद शामिल हुए। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों और कर्मियों के कौशल विकास को बढ़ावा देना और सुशासन को मजबूत करना है। देवघर के नए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने आज तड़के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में आगामी श्रावणी मेले के सफल आयोजन को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत राज्य के 50 छात्रों का एक दल मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गया है। इन छात्रों को धनबाद स्थित IIT ISM से IIT इंदौर भेजा गया है, जहां वे वहां की संस्कृति, शिक्षा और परंपराओं को करीब से समझेंगे। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में हुए जमीन विवाद और गोलीबारी में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने आज दोपहर अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई की जानकारी दी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

मैं हूं अविनाश और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 MHz पर, और यह है आपका अपना कार्यक्रम युवाणी, जहां बात होती है जोश की, जज्बे की और जिज्ञासा की, और उन सपनों की जो अभी पूरे होने बाकी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने हमें सपने देखना सिखाया। बात करेंगे उस खेल की जो करोड़ों दिलों की धड़कन है, और बात करेंगे उस ताकत की जो हर कामयाब इंसान के भीतर होती है, आत्म अनुशासन। तो बने रहिए।

सके, वही बच्चा एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा और करोड़ों लोगों की दिलों में रचनात्मक विचारों से भर देगा। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम की, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। साधारण परिवार से आने वाले कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी करते हुए परिवार का भरण पोषण करने के लिए अखबार बांटते थे। विज्ञान और इंजीनियरिंग में उन्हें गहरी रुचि थी। उन्हें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने भारत के पहले उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में मिसाइल विकास के कार्यक्रम में भी उनका अहम योगदान रहा। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि और भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी वह यह थी कि वो राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी हमेशा युवाओं के बीच रहकर उन्हें प्रेरित करना चाहते थे। इसके लिए वे अक्सर स्कूल जाते थे और बच्चों से मिलते थे, कहते थे, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो आंखों से नींदें उड़ा दे। 27 जुलाई 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में छात्रों को संबोधित करते हुए कलाम साहब ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया था। यह एक बहुत बड़ी क्षति थी और एक ऐसा खालीपन था जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। दोस्तों, कलाम साहब की ज़िंदगी से हमें एक सबक मिलता है, आपकी मंजिल को परिस्थितियाँ तय नहीं करती बल्कि आपकी मेहनत और आपके इरादे तय करते हैं। अगर एक अखबार बेचने वाला बच्चा आसमान में रॉकेट भेज सकता है तो दोस्त आप क्या कुछ नहीं कर सकते। कलाम साहब की इस प्रेरणादायक कहानी के बाद सुनिए एक ऐसा गाना जो आपकी सोच को नई उड़ान देगा।

बंदा, जो सैम बहादुर फिल्म का है, इसके लेखक गुलजार और आवाज़ दी है शंकर महादेवन ने। साथियों, क्या आपने कभी देखा है कि एक स्टेडियम में 80,000 लोग एक साथ चिल्लाए गोल? ये एक पल में भाषा नहीं, धर्म नहीं, जाति नहीं, सिर्फ एक जुनून, फुटबॉल। आज हम विश्व फुटबॉल दिवस मना रहे हैं, और यह दिन सिर्फ एक खेल का जश्न नहीं, यह उस जज्बे का जश्न है जो दुनिया के हर कोने में एक जैसा धड़कता है। फुटबॉल आज दुनिया के सबसे पसंदीदा खेल है। लगभग 4 अरब लोग इस खेल के दीवाने हैं, यानी दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी। फीफा वर्ल्ड कप, जो हर 4 सालों में एक बार होता है, ओलंपिक से भी ज़्यादा दर्शक खींचता है। ब्राज़ील की गलियों में जो बच्चा नंगे पाँव बोतल की ढक्कन को गेंद बनाकर खेलता है, वही एक दिन पेले या नेमार बनता है। अर्जेंटीना के एक छोटे से कस्बे का जो लड़का ग्रोथ हार्मोन की बीमारी से जूझ रहा था, वही लियोनेल मेसी बना और दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर कहलाया। और हमारे जमशेदपुर की ही बात करें तो यह शहर खुद फुटबॉल की धड़कन है। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब आज इंडियन सॉकर लीग में एक सम्मानित नाम है। इस शहर की मिट्टी में फुटबॉल का जुनून जैसे खून में घुला हुआ है। फुटबॉल एकता सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है। यह बताता है कि अकेले आप तेज तो दौड़ सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर काम करने से आप दूर तक जा सकते हैं। तो आप सभी श्रोताओं को विश्व फुटबॉल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैदान में उतरिए, खेलिए और जीतिए। खेल का जोश और जीत का जज्बा, इस एहसास को और गहरा कीजिए इस धमाकेदार गाने के साथ।

अभी आप सुन रहे थे संजू फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है शेखर अस्तित्व ने, आवाज़ दी है सुखविंदर और श्रेया घोषाल ने, और म्यूज़िक है विशाल अंत्रोस।

दोस्तों, एक सवाल और ज़रा दिल से जवाब दीजिएगा। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने रात को सोने से पहले सोचा, कल से पक्का पढ़ूंगा, कल से पक्का एक्सरसाइज करूंगा, कल से पक्का मोबाइल कम चलाऊंगा, या कल से अपनी ज़िंदगी को राइट ट्रैक पर लाऊंगा, और अगले दिन वही ढाक के तीन पात? ये सिर्फ आपकी अपनी कहानी नहीं, बल्कि ज़्यादातर युवाओं का यही हाल है। और इसका सिर्फ एक ही हल है, आत्म अनुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब खुद पर काबू रखने की वो ताकत जो आपको तब भी सही काम करने पर मजबूर करे जब आपका मन उस कार्य को करने का बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, दुनिया के हर सफल इंसान की सबसे बड़ी खूबी है उसकी प्रतिभा नहीं, बल्कि उसका अनुशासन। कलाम साहब हर रोज सुबह तय समय पर उठते थे, पढ़ते थे। सचिन तेंदुलकर नेट पर तब भी प्रैक्टिस करते थे जब वो पहले से ही वर्ल्ड चैंपियन थे। अनुशासन के बिना कोई भी उपलब्धि टिकाऊ नहीं होती है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, आत्म अनुशासन

यह एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। तो कैसे बनाई यह आदत? युवानी लाया है आपके लिए कुछ आसान उपाय। पहला, छोटे लक्ष्य बनाएं। मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा, ये अच्छा लक्ष्य है, लेकिन आज का लक्ष्य नहीं। आज का लक्ष्य होना चाहिए कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। दूसरा, एक रूटीन बनाइए और उससे चिपके रहिए। हमारा दिमाग रूटीन से प्यार करता है। जब कोई काम हम हर दिन एक ही वक्त पर करते हैं तो वो आदत बन जाती है, मेहनत नहीं। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए। सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स में वेब सीरीज़ देखना या गेम खेलना, इनमें से कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन जब ये आपके लक्ष्य और आपके बीच आए तब समझ जाइए कि ये आपके दुश्मन बन चुके हैं। एक बार अपना स्क्रीन टाइम चेक करिए, सच्चाई खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। चौथा, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। जब आपने एक हफ्ते अनुशासन से काम किया तो खुद को शाबाशी दीजिए। एक छुट्टी का दिन हो या एक पसंदीदा खाना, यह आपकी मोटिवेशन को बनाए रखेगा। और सबसे ज़रूरी बात, अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं है, इसका मतलब प्राथमिकता है। यह जानना कि अभी क्या ज़रूरी है। दोस्तों, याद रखिए, जो इंसान खुद पर विजय पा सकता है वह पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है। आत्म अनुशासन की इस ज़रूरी बात के साथ एक गाना जो हर युवा के दिल तक मैं पहुंचाना चाहता हूं।

अभी आपने सुना चक दे इंडिया फिल्म का गीत, जिसे लिखा था जयदीप सैनी ने और आवाज़ दी थी सुखविंदर ने और म्यूजिक दिया था सलीम सुलेमान ने। दोस्तों एक सवाल, और दोस्तों डालते हैं एक नज़र उन खबरों पर जो इन दिनों चर्चा में है और हर जागरूक युवा को ज़रूर पता होनी चाहिए। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी अब जानलेवा साबित होने लगी है। शहर और आसपास के इलाकों में लू लगने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही पिछले 27 दिनों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, मृतकों में एक महिला भी शामिल है। रविवार दोपहर बिष्टुपुर कोल्ड स्टोरेज के पास एक व्यक्ति अचानक गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी जान जा चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉक्टरों ने दोपहर में घर से निकलने के लिए सख्त मना करा है, जब तक बहुत ज़रूरी कार्य ना हो घर से ना निकले। देश में गर्मी के साथ साथ अब चढ़ चुका है आईपीएल का भी खुमार। ग्रुप मुकाबले अब समाप्त हो चुके हैं और हर क्रिकेट प्रेमी की नज़रें टिकी है अब प्लेऑफ्स पर। कल राजस्थान रॉयल ने मुंबई इंडियंस को 30 रनों से हराया और प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया। अंक तालिका पर पहले स्थान पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दूसरे पर गुजरात टाइटन्स, तीसरे पर सनराइजर्स हैदराबाद और चौथे पायदान पर अब राजस्थान रॉयल्स है। इन चारों टीमों की नज़रें अब ट्रॉफी पर है और इसके लिए जल्दी ये आपस में टकराएंगे।

दोस्तों, आज के युवानी में हमने बात की एक ऐसे इंसान की जिसने सपनों को हकीकत में बदला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक ऐसे खेल की जो करोड़ों दिलों को जोड़ता है, फुटबॉल, और एक ऐसी ताकत की जो हर बड़ी कामयाबी के पीछे होती है, आत्म अनुशासन। अंत में एक बात जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप युवा हैं, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। गलतियाँ होंगी, गिरकर उठना सीखिए, रास्ता भटकिएगा, लौटना सीखिए, मुश्किलें आएंगी, टूटना नहीं है। आकाशवाणी जमशेदपुर पर आप सुन रहे थे युवानी। मैं अविनाश आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे नए जोश के साथ और नई बातों के साथ। तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।

0: युवा श्रोताओं को संबोधित उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हमारे श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

और श्रोताओं आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। जी हाँ श्रोताओं, फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि यह एक वैश्विक भाषा है। जब एक गेंद मैदान के बीच में घूमती है तो पूरी दुनिया की धड़कनें एक साथ चलती हैं। अलग अलग संस्कृतियों, मजहबों और नस्लों के लोग एक ही रंग की जर्सी पहनकर जब स्टेडियम में बैठते हैं तो वो अजनबी भी गले मिल जाते हैं। एक देश का खिलाड़ी गोल करता है तो सात समंदर पार बैठा हुआ एक अनजान इंसान खुशी से रो पड़ता है। यह जुड़ाव ही तो है। यह खेल हमें सिखाता है कि हम भले ही अलग अलग देशों के नागरिक हों लेकिन इंसानी जज्बात हर जगह एक जैसे हैं।

फुटबॉल की खूबसूरती यही है, इसे खेलने के लिए आपको किसी महंगे बल्ले, पैड या कोर्ट की जरूरत नहीं होती। बस एक गेंद चाहिए, चार पत्थर चाहिए गोल पोस्ट बनाने के लिए, और दिल में चाहिए ढेर सारा हौसला। ये वो खेल है जो अमीर और गरीब के फासले को मिटा देता है। जब मैदान पर 22 खिलाड़ी दौड़ते हैं तो वो सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं, बल्कि उन करोड़ों फैंस की उम्मीदों के लिए दौड़ते हैं जो टीवी स्क्रीन और रेडियो से चिपके बैठे होते हैं।

वारिस फिल्म का ये गीत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ में। गीत लिखा था वर्मा मलिक ने और संगीत उत्तम जगदीश का था।

0: श्रोताओं, एक मजबूत और खूबसूरत इमारत वही होती है जिसके ईंट मजबूत हो। ठीक उसी तरह हमारा देश भी तभी पूरी तरह से तरक्की कर सकता है जब समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का, पढ़ने का और सम्मान से जीने का पूरा मौका मिले। जी हाँ श्रोताओं, इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए सरकार द्वारा एक बेहद ही खास कदम उठाया गया जिसे हम 15 सूत्री कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। तो चलिए आपको इसी पर सुनवाते हैं पूर्व प्रसारित वार्ता जिसका विषय ही है 15 सूत्री कार्यक्रम यानी अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं। वार्ताकार हैं एसएन ओझा।
1: अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है। चलिए अब हम इसे एक एक करके देखते हैं। पहला, एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य है कि अपेक्षित वर्गों के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं का संपूर्ण विकास हो सके। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। ICDS प्रोजेक्ट और आंगनवाड़ी केंद्र एक ऐसे निश्चित संख्या में अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले गाँवों में, प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे ताकि इस योजना का लाभ ऐसे समुदायों को काफी उचित मात्रा में मिल सके। दूसरा है विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता का सुधारना। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और ऐसी अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत चलाए जा रहे स्कूल, इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे विद्यालयों की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले गाँवों में, क्षेत्रों में स्थापित किया जा सके। तीसरा, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन। उन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती और तैनाती के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जो इस भाषा से संबंधित 1/4 जनसंख्या की सेवा करते हैं। चौथा, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण। एरिया इंटेंसिव और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केंद्रीय योजना अंतर्गत स्कीम में शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षणिक व्यवस्था एवं मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान है। पांचवा, अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यालयों के लिए छात्रवृत्ति। अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक बाद छात्रवृत्ति योजना बनाई जाएगी एवं इसे कार्यान्वित किया जाएगा। छठवां, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षणिक संसाधनों को उन्नत करना। सरकार मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सभी संसाधन सहायता देगी ताकि यह अपने कार्यकलाप को अधिक प्रभावशाली रूप से संचालन कर सके। सातवां, गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना। इसमें 3 तरह के मुख्य रूप से एरिया में फोकस किए जाएंगे। पहला, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सर्वांगीण ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों को अधिक से अधिक मदद पहुंचाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। इसमें दूसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के अल्पसंख्यकों को आर्थिक मदद पहुंचाकर उन्हें रोजगार प्रदान करने में मदद करना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें तीसरा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 200 जिलों में शुरू किया गया है तथा इन जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को इस कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है। बचे हुए जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटन की निश्चित प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उस समय तक निर्धारित किया जाएगा जब तक इन जिलों का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं कर लिया जाता है। आठवां, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन। अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निम्न श्रेणी के तकनीकी कार्यों में लगे हुए हैं या दस्तकारी द्वारा अपनी उपजीविका कमाता है। ऐसे लोगों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दिए जाने से उनकी कौशल और उपजीविका क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए सभी नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकतर संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। नौवा, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अविवृत ऋण सहायता। इसमें भी मुख्य दो तरह की बातें कही गई है। जैसे क, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को 1994 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों में आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना था तथा सरकार इस निगम को अधिक आर्थिक मदद देकर इसे सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है, जिससे यह निगम अपने उद्देश्यों की पूर्णतः प्राप्त कर सके। इसमें ख है, स्वरोजगार योजना का निर्माण एवं उसे बनाए रखने के लिए बैंक ऋण आवश्यक है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए कुल बैंक ऋण का 40% लक्ष्य घरेलू बैंकों के लिए निश्चित किया गया है। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जैसे खेती के लिए ऋण, घर के लिए ऋण एवं अन्य छोटे ऋण दिया जाएगा, जिसमें निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए रखा गया है। दसवां प्रोग्राम है राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती। इसमें क, ख, ग, घ है। पहला क है, राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि पुलिस कर्मियों की भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा। ख, केंद्र सरकार की केंद्रीय पुलिस बलों में कार्मिकों की भर्ती करते समय इस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी, जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक अल्पसंख्यकों को की भर्ती की जा सके। ग, रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा पब्लिक सेक्टर उद्यमों द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जो अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। घ, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सरकारी एवं विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थाओं में कोचिंग प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी एवं इन संस्थाओं को आर्थिक मदद दिया जाएगा। 11 पॉइंट, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। इंदिरा आवास योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए निर्धारित किया गया है। 12वां पॉइंट, अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों में की स्थिति में सुधार करना। एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम योजनाओं में केंद्र सरकार शहरी मलिन बस्तियों के विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्यों, क्षेत्रों को सहायता देती है, जिससे इन बस्तियों में जन सुख सुविधाएं और मूल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यक बाहुल्य मलिन बस्तियों को उचित रूप से मिल सके। सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम एवं निवारण के लिए भी कुछ, इसमें 13वां पॉइंट है, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगा संभावित के रूप में अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों में ऐसे जिले एवं पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो अत्यधिक कुशल, निष्पक्ष और निरपेक्ष अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे स्थान में सेवारत जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की शामिल जाना है एवं ऐसे कार्यों के लिए इन अधिकारियों को प्रोन्नति में विशेष प्राथमिकता दी जानी है। 14वां पॉइंट, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन। उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी है जो सांप्रदायिक दंगे भड़काते हैं अथवा हिंसा करते हैं। इसके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे ताकि अपराधियों को शीघ्रता से सूचीबद्ध कर उन्हें दंडित किया जा सके। 15वां पॉइंट है, सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास। सांप्रदायिक दंगे के पीड़ितों को तत्काल राहत दी जानी है ताकि उनके पुनर्वास के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जा सके और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके।
0: 15 सूत्री कार्यक्रम यानी अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं, इस विषय पर श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ताकार थे एस एन ओझा।

और श्रोताओं आइए बातचीत कर लेते हैं बदलता भारत बढ़ते स्टार्टअप पर। जी हाँ श्रोताओं, कहते हैं समय की गति को वही पहचानता है जो बदलाव की बयार के साथ अपनी दिशा बदलता है। आज का भारत एक ऐसे ही ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक समय था जब भारतीय युवाओं का सबसे बड़ा सपना एक सुरक्षित नौकरी पाना होता था। दफ्तर की चार दीवारी और बंधी बंधाई तनख्वाह में जिंदगी का सिमट जाना ही सफलता का पैमाना माना जाता था। लेकिन आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत की तस्वीर बदल चुकी है। आज का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है और इस महापरिवर्तन के केंद्र में है स्टार्टअप इकोसिस्टम। जी हाँ श्रोताओं, आंकड़े गवाह हैं कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। हजारों की संख्या में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स और 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत वैश्विक पटल पर अपनी तकनीकी और व्यापारिक शक्ति का लोहा मनवा रहा है।

0: तुमसा नहीं देखा इस फिल्म का ये गीत श्रोताओं सुन रहे थे अभी आप। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत लिखा समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का था। और इसी गीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम कल कारखाने से मुझे अनिंदु को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने

0: फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानी पूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the first civil investiture ceremony held at the Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honored with the Padma Vibhushan. In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was awarded Padma Bhushan for his services in the field of public affairs. Besides, Shatavdhani Dr. R. Ganesh received the award in the field of art. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received the Padma Bhushan for his contribution to trade and industry, while Dr. Kalipati Ramasamy Palaniswamy received the award in recognition of his outstanding contribution to the field of medicine. Those eminent personalities who have been honored with Padma Shri include Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar for her contribution in the field of sports and Taga Ram Bheel for his contribution in the field of arts. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy, among others, were also present on the occasion. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The remaining Padma awardees will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. The government is making all efforts to ensure smooth supply of petroleum products within the country. Addressing the inter-ministerial briefing in New Delhi today on the recent developments in West Asia, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said the refinery production of LPG in the country has been increased to 50,000 tons per day. The Joint Secretary said that over 8 lakh PNG connections have been gasified since March, adding that infrastructure has been created for 2,87,000 in connections. Additional Secretary of the Department of Fertilizers, Aparna Sharma, said that the overall stock position of fertilizers in the country remains comfortable. The Supreme Court has issued notice to the Union Government on a PIL seeking stricter prohibition of child labour in entertainment and hospitality-linked establishments. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joymalia Bagchi and Justice Vipul M. Pancholi took note of the submissions made by Child Rights Collective, Just Rights for Children Alliance. A Delhi court today convicted Congress leader Alka Lamba in a case related to an assault on police personnel during a protest at the Jantar Mantar in the year 2024. Additional Chief Judicial Magistrate Ashwini Pamar convicted Lamba and fixed 5th of June to hear the arguments on Lamba's sentencing. The prosecution had accused Lamba, the president of the All India Mahila Congress, of obstructing police and blocking a public road while holding a protest at the Jantar Mantar on 29th of July 2024. Members of the Delhi Gymkhana Club today moved the Delhi High Court against the centre's order asking the club to hand over its premises to the government by the 5th of next month. The court listed the lawsuit for hearing tomorrow. The centre has asked the Gymkhana Club in Lachenz's Delhi to hand over its premises by 5th of June, citing that the 27.3-acre land parcel was required for strengthening and securing the defence infrastructure. In Tamil Nadu, political developments within the opposition AIADMK took a dramatic turn today as 3 MLAs belonging to the dissent group led by senior leader S.P. Velumani tendered their resignations from the assembly and joined the ruling Tamilaga Vetri Kadagam or TVK. Benchmark domestic equity indices ended on a bullish note today amid hopes of a possible agreement to end the US-Iran conflict. Sensex surged 1,074 points or 1.4% to close at 76,489, while Nifty advanced 312 points to settle at 24,032. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हुए हैं। कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनिए बस कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को कृष्णा कावेरी का प्यार भरा जोहार। श्रोताओं लीजिए, आज सुनिए कुरमाली लोकगीत। कलाकार हैं रोहिण चंद्र महतो।

अभी आप सुन रहे थे कुर्माली लोकगीत। कलाकार थे रोहिन चंद्र महतो। श्रोताओं, इसके साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

श्रोताओं, चलिए सबसे पहले आपको आज के मुख्य आकर्षण से अवगत करवा दें। आज भेंटवार्ता में आप सुनेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड से कृषि लोन कैसे प्राप्त करें किसान। भेंटवार्ताकार होंगे बैंक ऑफ इंडिया के पूर्वी सिंहभूम के एलडीएम संजीव कुमार चौधरी।

साथ ही चर्चा का विषय होगा थायराइड के प्रति जागरूकता। श्रोताओं इसके साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। समय रहा तो गीत संगीत से भी आप सबका मनोरंजन अवश्य ही करेंगे।

बहरहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सबसे कुछ जरूरी बात कर लेते हैं। किसान भाई बहनों, भीषण गर्मी का मौसम है। दिन के समय आसमान से मानो अंगारा बरसता है। श्रोताओं, ऐसी प्रचंड तेज धूप में हीट स्ट्रोक या लू लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में घर से बाहर निकलते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। श्रोताओं, जब भी घर से निकलें, कुछ खाना खाकर निकलें। खाली पेट कभी भी घर से बाहर ना निकलें। बाहर जाना जरूरी हो तब ही निकलें। घर से बाहर निकलते समय छाता और साथ में एक पानी का बोतल जरूर अपने साथ रखें।

श्रोताओं, गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए आयुष मंत्रालय ने 18 मई को भीषण गर्मी, हीट स्ट्रोक और लू से बचाव को लेकर एक पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने, दोपहर की तेज़ धूप से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने और शरीर में पानी की कमी को ना होने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर चक्कर आना, सिर दर्द, मतली, उल्टी, शरीर का तापमान बहुत बढ़ना, बेहोशी या दौरे पड़ना, मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे लक्षण दिखें तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हीट स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में देरी ना करते हुए तुरंत अस्पताल जाकर चिकित्सक से अपना उपचार करें और उनके परामर्श से अपना ख्याल रखें।

श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए ये भेंट वार्ता। विषय है किसान क्रेडिट कार्ड से कृषि लोन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई बहन। भेंट वार्ताकार हैं संजीव कुमार चौधरी, जो बैंक ऑफ इंडिया पूर्वी सिंहभूम के LDM लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, और इनसे बातचीत कर रही हैं कृष्णा कावेरी।

0: कार्यक्रम कृषि जगत में आज हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड से कृषि लोन कैसे पाएं। किसान भाई बहनों, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पूर्वी सिंहभूम श्री संजीव कुमार चौधरी जी। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए आपने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में चर्चा करने का मुद्दा विषय रखा है। ये काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी होगी किसान भाइयों के लिए
0: जी।
1: इसको आप सही तरीका से अगर उपयोग करें कि हमारे किसान भाई, तो उनकी कृषि आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।
0: जी जी संजीव जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या है और इस कार्ड से किसान भाइयों को क्या लाभ होता है।
1: मुख्य रूप से किसान क्रेडिट कार्ड किसान भाइयों के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा एक ऋण की सुविधा है। क्रेडिट कार्ड के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि क्रेडिट कार्ड का अर्थ होता है कि आप सामान क्रेडिट पे ले लीजिए, उसका भुगतान बाद में कीजिए। उसी प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड मतलब किसान अपने जरूरत के सामान जैसे खेती के लिए खाद बीज, उनके औषधि और साथ में जो मजदूरी के जो खर्चे आते हैं खेती करते समय, उन सभी का भुगतान करने के लिए उनके पास कैपेसिटी नहीं होता है, तो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो उस खर्चे के लिए जो खर्चा है उसके लिए वो ऋण ले सकते हैं। उस ऋण का नाम ही किसान क्रेडिट कार्ड है।
0: जी जी जी, मेरा अगला सवाल ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनता है और कहाँ बनता है, साथ ही इसे बनवाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है।
1: किसान क्रेडिट कार्ड लेना बहुत सरल है। बनाने के लिए तो हर एक सभी गांव में कृषि मित्र होते हैं, कृषि मित्र के द्वारा बनाया जाता है। कृषि मित्र के पास आवेदन भी उपलब्ध होते हैं, कृषि मित्र उस आवेदन को कंप्लीट भरवाते हैं किसानों से, वो ब्लॉक में जमा करते हैं, ब्लॉक से वो किसान विभिन्न बैंकों को भेज दिया जाता है जहाँ किसानों का खाता होता है।
0: जी जी।
1: उसके अलावा डायरेक्ट किसान सीधे रूप से बैंकों से भी निवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो बैंक द्वारा भी उनकी जांच पड़ताल और फॉर्म वगैरह आवेदन वगैरह लेकर उसका स्वीकृति प्रदान करती है।
0: जी जी, एक सवाल और है कि ये किसान क्रेडिट कार्ड कितने दिनों के अंदर बन जाता है।
1: किसान क्रेडिट कार्ड मुख्य रूप से एक सप्ताह या आधे, अगर मौसम कृषि का मौसम है तो थोड़ा सा कुछ समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन कुछ बहुत विशेष समय इसमें नहीं लगता है। एक सप्ताह 10 दिन में निश्चित रूप से बन जाता है।
0: जी जी, मेरा अगला सवाल ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ कौन कौन से किसान ले सकते हैं, यानी इसका लाभ लेने के लिए कौन किसान योग्य है।
1: किसान क्रेडिट कार्ड तो सभी तरह के किसान ले सकते हैं, चाहे वो फसल की खेती करते हो, चाहे वो मछली पालन करते हो, चाहे वो पशुपालन करते हो, चाहे वो डेयरी वाला काम करते हो, गाय पालन वाला काम करते हैं, ये सभी लोग किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं।
0: जी जी जी, अब आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि किसान क्रेडिट का लाभ लेने के लिए कौन सा बैंक सबसे अच्छा है।
1: किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ सभी बैंक से लिया जा सकता है, जो खास करके जो सरकारी बैंक है उन सभी से लिया जा सकता है। विशेष लाभ की ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो ब्याज का जो रेट होता है, दर होता है, ब्याज का दर जो है सभी बैंकों में एक ही समान है, इसीलिए किसानों को किसी अन्य बैंक से या किसी खास बैंक से लेने में कोई नफा नुकसान नहीं है। सबको बराबर एक ही रेट पर, एक ही दर पर, एक ही किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।
0: जी जी, एक सवाल और था कि किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता की अवधि कितने साल की होती है।
1: किसान क्रेडिट कार्ड अगर एक बार बन जाता है तो वो 5 साल के लिए वैध होता है।
0: जी जी,
1: 5 साल तक उसको किसान खेती के समय उसको ले सकते हैं, फिर फसल होने के बाद, फसल बिक्री के पश्चात उसको जमा कर सकते हैं, फिर उनको फसल जब लेना हो फिर उनको ऋण का रकम मिल जाता है, फिर वो जब उनका फसल हो जाता है फसल बेच के वो फिर जमा कर सकते हैं। तो कुल 5 साल तक वो चलता है सिलसिला एक बार स्वीकृति के पश्चात।
0: जी जी जी, मेरा एक और सवाल है कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसान भाइयों को कितने रुपए तक का ऋण मिलता है, साथ ही ये भी बताइए कि ब्याज दर पर कितने प्रतिशत तक का छूट मिलता है।
1: किसान क्रेडिट कार्ड मुख्यतः कृषक के हमारे किसान भाइयों के पास कितनी जमीन है या कितने पर वो खेती करते हैं उस हिसाब से निर्धारित होता है।
0: जी
1: ये समान रूप से ऐसा नहीं है कि मतलब कोई छोटे किसान है और कोई बड़े किसान है,
0: जी
1: दोनों के ऋण में अंतर हो सकता है क्योंकि दोनों के खर्चे अलग अलग रहते हैं।
0: जी
1: किन्हीं का खर्चा कम होगा, फिर छोटे किसानों का खर्चा कम होगा, बड़े किसानों का खर्चा ज्यादा होता है।
0: जी
1: और इस पर निश्चित है 5 लाख तक 7% ही ब्याज आता है साल में, 5 लाख तक जिसका भी ऋण है वो 7% ब्याज ही आता है। दूसरी चीज है ध्यान देने वाली कि ब्याज की रकम अगर किसान भाई चाहे थोड़ा सा जागरूक रहें तो बचत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सुविधा है, सुविधा कि किसान क्रेडिट कार्ड का अगर हम समय पे भुगतान कर दें तो उसपे जो किसान क्रेडिट कार्ड के ऋण खाते पे जो ब्याज लगा है उसका 3% केंद्र सरकार वापस कर देती है और हमारे झारखंड में राज्य सरकार 4% वापस कर देती है। इसका मतलब हुआ कि जो 7% ब्याज लगता है वो पूरा का पूरा ब्याज सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा वापस किसानों को कर दिया जाता है, जिससे कि उनके खाते में ब्याज की रकम 0 हो जाती।
0: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, ये चूंकि समय पे भुगतान करने वालों के लिए सरकार ने एक प्रोत्साहन के रूप में दिया है, तो मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह होगा कि जब भी किसान क्रेडिट कार्ड वो लें, किसान क्रेडिट कार्ड जरूर लें, और जब भी लें तो इस समय का ध्यान रखें कि जब उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग उनके द्वारा जब ऋण लिया है तो उसको 1 वर्ष के भीतर जरूर जमा करें और
0: जी
1: फिर से जरूरत पड़े फिर से उस पर ले सकते हैं, ऐसा कोई रोक नहीं है।
0: जी
1: इससे फायदा ये होगा कि उनका जो ब्याज का रकम है वो सरकार के द्वारा वापस कर दिया जाएगा, तो
0: जी
1: ब्याज का कोई ज्यादा भार उनके ऊपर नहीं आएगा।
0: जी बहुत अच्छी बात है जी। मन में एक और सवाल आ रहा है कि ये लोन कितने समय में चुकाना होता है, और यदि कोई किसान किसी कारणवश समय पर ऋण नहीं चुका पाता है तब क्या होता है?
1: क्योंकि ये किसान क्रेडिट कार्ड जो फसल ऋण है, फसल ऋण फसल से जुड़ा हुआ ऋण है, तो उनका जो फसल की अवधि उनकी होती है
0: जी
1: उस पीरियड के लिए ही ऋण होता है। जैसे हमारे इधर पूर्वी सिंहभूम में धान की खेती लोग ज्यादा करते हैं,
0: जी
1: तो धान की खेती करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक पैसे की जरूरत होती है।
0: जी
1: 6 महीने के अंदर ही किसानों के पास में अपना फसल आ जाता है,
0: जी
1: तो किसान कोशिश करे कि उनका जब उनका फसल बिक जाए
0: जी
1: 6 महीने 7 महीने 8 महीने, लेकिन वर्ष पूरा होने के पहले
0: जी
1: उसको किसान क्रेडिट कार्ड के खाते में अपने जमा करवा दें, फिर लगे तो जरूरत हो तो उसके दूसरे ही दिन वो फिर से रकम का उपयोग कर सकते हैं, फिर से ले सकते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा उनको अगर खेती करना है, फिर से कुछ फसल लगाना है,
0: जी
1: तो उसके अगले दिन ही वो फिर से वो रकम को बैंक से प्राप्त कर सकते हैं,
0: जी
1: उसमें उनको कोई असुविधा नहीं होगी।
0: जी अंत में मेरा एक अहम सवाल है कि किसान क्रेडिट कार्ड से जो भी ऋण मिलता है तो उस ऋण के रुपये को किसान किन किन चीजों में खर्च कर सकते हैं?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है।
0: जी
1: वास्तविक रूप से सरकार का ऐसा कोई ही रोक नहीं है कि किसान क्रेडिट कार्ड के पैसे का कहाँ क्या किसमें खर्च करना है।
0: जी
1: उद्देश्य उद्देश्य ये है कि किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं वो अच्छे बीज का उपयोग करें, तो बीज खरीदने के पैसे उसमें जुड़े हुए रहते हैं।
0: जी
1: उसके बाद उसमें खाद का जो उपयोग करते हैं वो खाद का भी मात्रा उसमें ऐड किया रहता है।
0: जी
1: उसके बाद वो कुछ मान लीजिए किसी के फसल में कुछ बीमारी वगैरह कभी कुछ कीटाणु वगैरह आ जाते हैं
0: जी
1: तो उनकी औषधि के भी पैसे उसमें जोड़े हुए रहते हैं,
0: जी
1: और मजदूरी जो भुगतान करना होता किसानों को किसी फसल को लगाने के लिए या काटने के लिए,
0: जी
1: उन सभी का जोड़ करके ही किसान क्रेडिट कार्ड का रकम तय होता है और उसी के हिसाब से दिया जाता है। तो
0: जी
1: किसानों को मेरा आग्रह होगा कि सभी चीज किसान करते हैं, लेकिन मैं जहां तक देखता हूं कि किसान बीज का उपयोग पुराने बीज का ही घर के बीज का ही उपयोग करते हैं, जिससे उनके फसल पे थोड़ा प्रभाव आता है, जितना फसल होना चाहिए वो हो नहीं पाता। तो ऐसा माना जाता है कि अगर वो किसान भी उन्नत किस्म के बीज का उपयोग करे, किसान क्रेडिट कार्ड लेके, तो उनका फसल भी बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी।
0: जी जी अंत में आप किसान क्रेडिट कार्ड के विषय में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि दूर दराज के गांव के किसानों को भी सरकार की इस योजना का लाभ मिल सके?
1: मैं किसान भाइयों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप अगर किसान खेती करते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी जरूर करें, नजदीकी शाखा से संपर्क करें, अपने ब्लॉक स्तर के प्रखंड किसी अधिकारी से संपर्क करें, आपके गांव में कृषि मित्र होंगे उनसे संपर्क करें और किसान क्रेडिट कार्ड जरूर लें। किसान क्रेडिट कार्ड लेने के बाद में आपको एक निश्चित रकम आपकी खेती के परिमाण के हिसाब से बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी, उस रकम का पूरा पूरी खेती में उपयोग करें, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के खाद, फिर औषधि और मजदूरी जो है उस सभी का पूरा खेती में उसको लगाएं, ताकि उससे आपकी खेती की फसल अच्छी हो और आपका आमदनी बढ़े। सरकार का उद्देश्य है कि आमदनी बढ़नी चाहिए लोगों की, किसानों की, तो आमदनी बढ़ाने के लिए एक बहुत सहायक चीज है। और दूसरी चीज है कि इसका समय पर भुगतान अगर आप करेंगे तो इसमें लगने वाले ब्याज भी सरकार के द्वारा ही क्षतिपूर्ति की जाएगी, तो आपको जितना रकम आप किसान क्रेडिट कार्ड से लेंगे उतना ही देना पड़ेगा। तीसरा एक फायदा यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो उसमें कृषि बीमा भी हो जाता, आपका फसल बीमा हो जाता है, फसल का भी अगर कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी बीमा कंपनी द्वारा की जाती
0: है। जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: तो अधिक से अधिक किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड को ले और किसान क्रेडिट कार्ड लेने के बाद में खेती करे, निश्चित रूप से उनका आय बढ़ेगा और वो खुशहाल होंगे।
0: जी किसान क्रेडिट कार्ड से हमारे किसान भाई बहन किस प्रकार कृषि लोन ले सकते हैं, इसकी बहुत ही अच्छे से और विस्तार से संपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। हम आशा करते हैं कि इस पूरी जानकारी से हमारे किसान भाई बहन भी भरपूर लाभ अवश्य उठाएंगे। संजीव कुमार चौधरी जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: किसान क्रेडिट कार्ड से कृषि लोन कैसे प्राप्त करें किसान भाई बहन, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे संजीव कुमार चौधरी और इनसे बातचीत कर रही थी कृष्णा कावेरी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं विश्व थायराइड दिवस पर। श्रोताओं, हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य थायराइड की बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है, इसके लक्षणों को पहचानना और सही समय पर सही उपचार के लिए प्रोत्साहित करना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। थायराइड बीमारी के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं: अचानक वजन का बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाना, अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होना, दिल की धड़कन में उतार चढ़ाव होना, त्वचा का रूखा होना और बालों का झड़ना, महिलाओं में मासिक धर्म का अनियमित होना, खून की एक साधारण जांच से TSH, T3, T4 टेस्ट से थायराइड का आसानी से पता लगाया जा सकता है। थायराइड होने पर डॉक्टर को दिखाकर सही समय पर दवा लेकर अपना उपचार अवश्य करवाएं। थायराइड बीमारी का सही समय पर सही इलाज के लिए लोगों को जागरूक करना ही विश्व थायराइड दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कृषि सलाह। किसान भाई बहनों, साप्ताहिक मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह ये है कि आने वाले दिनों में लू और गर्म हवा की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों की नर्सरी, सब्जियों को और जायद फसलों तथा फलों के बगीचों में हल्की सिंचाई नियमित करें। नर्सरी व वृक्षों को लू लगने या लू से बचाने हेतु अवरोधकों के उपयोग की सलाह दी जाती है। किसान भाई बहनों, इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समय अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।

किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। सुनेंगे चंद विज्ञापनों और विचारों के बाद शाम 7 बजे से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोतो, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी की रांची केंद्र से, शाम के 7 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वित्त और जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग पर दिया जोर। देवघर एम्स का 8वां स्थापना दिवस सम्पन्न। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सराहा। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में अगले 2 दिन आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। कई हिस्सों में लू का भी प्रकोप। और रांची में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। अब तक 12 एथलीटों ने पक्का किया कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट।

0: और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री दिए गए। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला, जिसे उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने लिया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण मिला। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण और महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा गया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में 2 उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें संपन्न हुई। पहली बैठक में वित्त और वाणिज्य कर विभाग के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट को सही तरीके से लागू करने और कमाई बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने के सुझाव दिए। वहीं दूसरी बैठक में जल संसाधन विभाग की संचालित योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं और पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने जैसे कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी काम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। देवघर एम्स ने आज अपना 8वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने एम्स की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। इस अवसर पर चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इससे पहले भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने आज देवघर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल बांग्लादेशियों को भारत का वोटर बनाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ऐसा कभी नहीं होने देगी।
1: कांग्रेस और जेएमएम बांग्लादेशी को वोटर इति बनाने का प्रयास करते हैं, मनसूबे को हम कामयाब नहीं। ममता बनर्जी जी इसी तरह से जो है दौड़ती रही। कल डायमंड हार्बर मॉडल किस तरह से फ्लॉप हुआ, आपने देखा कि 1 लाख से ज्यादा जो है माल्टा का विधानसभा ले ली। और इस बार जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाने का प्रयास और जेएमएम दोनों ने सुना।
0: गिरिडीह नगर निगम के बोर्ड की दूसरी बैठक आज नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में पूरी हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, मेयर प्रमिला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार और सभी वार्ड पार्षद शामिल हुए। मौके पर नगर विकास मंत्री ने कहा कि शहर के विकास के लिए अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है।
2: निगम की आज दूसरी बैठक निगम के सभागार में हुई। तमाम सम्मानित वार्ड पार्षद उपस्थित हुए। शहर की विभिन्न समस्याओं के बारे में समग्र चर्चा हुई और इस चर्चा के फलाफल में गिरिडीह को और बेहतर और सुंदर और विकसित बनाने की दिशा में निगम और निगम के तमाम साथी प्रयास रहे।
0: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मियों के कौशल विकास को बढ़ावा देना और सुशासन को मजबूत करना है। मौके पर मंत्री ने कहा कि इस डिजिटल लर्निंग और लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से सरकारी योजनाओं को जमीन पर बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा के सलगी चूल्हा पानी में आज दामोदर महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि प्रकृति की गोद में आकर उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। राज्यपाल ने इलाके की पुरानी संस्कृति और धार्मिक पहचान को बचाने पर जोर दिया।
3: बल्कि जीवन दायनी शक्ति है। दामोदर स्वयं भगवान विष्णु का नाम है, इसलिए इस नदी के प्रति हमारी श्रद्धा केवल परंपरा नहीं बल्कि इससे हमारा एक गहरा आध्यात्मिक संबंध भी है।
0: केंद्र सरकार के

0: एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत राज्य के 50 छात्रों का एक दल मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गया है। इन छात्रों को धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम से आईआईटी इंदौर भेजा गया है। आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को वहां की संस्कृति, शिक्षा और परंपराओं को करीब से समझने का अवसर मिलेगा।
1: इसका मेन एम ये है कि डिफरेंट स्टेट को जाके उसका कल्चर के बारे में, उसका एक्टिविटी के बारे में झारखंड बच्चों को पता हो, एंड वो एक्वेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमिक्सिंग इन द सोसाइटी। 50 बच्चे यहीं से जा रहे हैं।
0: प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो ने आज धनबाद के सर्किट हाउस में जिला महिला कांग्रेस कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हुई। रमा खलखो ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी सरकार परिसीमन का बहाना बनाकर इसे टाल रही है। राज्य सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद के अवसर पर घोषित सरकारी छुट्टी की तारीख में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। अब राज्य सरकार के सभी कार्यालयों और संस्थानों में 28 मई को बकरीद की आधिकारिक छुट्टी रहेगी। इससे पहले यह अवकाश 27 मई को तय किया गया था। गिरिडीह पुलिस ने खंडोली मोड़ से अपहृत तस्लीम अंसारी को 24 घंटे में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगल से सुरक्षित छुड़ा लिया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि अपराधियों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने एसआईटी गठित कर 5 अपहरणकर्ताओं को गाड़ी और मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गुड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। दूसरी ओर राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। डाल्टनगंज 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने नया इतिहास रच दिया है। शानदार प्रदर्शन के दम पर गुरिंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, रवीना और सीमा सहित कुल 12 एथलीटों ने अब तक आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस बीच आज महिलाओं के 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पुरुष वर्ग की दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामम्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ में आयोजित दूसरी अखिल भारतीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए राज्य के लिए कई कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वित्त और जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग पर दिया जोर। देवघर एम्स का 8वां स्थापना दिवस संपन्न। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सराहा। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में अगले 2 दिन आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। कई हिस्सों में लू का भी प्रकोप। और रांची में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। अब तक 12 एथलीटों ने पक्का किया कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता।
1: राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने को मिलता है कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पाने के लिए आज भी झारखंड के युवाओं को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन और शैक्षणिक कैलेंडर के सही तरीके से अनुपालन पर ध्यान देने को कहा। रांची के सीसीएल सभागार में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों के लिए चयनित 132 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम में रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। रांची में आयोजित रोजगार मेला में सबसे ज्यादा 103 नियुक्तियां रेलवे सेक्टर में मिली। इसके अलावा डाक विभाग, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और भारतीय खाद्य निगम समेत कुछ अन्य विभागों से जुड़ी नियुक्ति पत्र युवाओं को दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं पर देश ने विश्वास किया है, आगे चलकर इन्हें अपनी जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन करना होगा।
2: आज 19वें साल में 51,000 मतलब देश के प्रधानमंत्री युवाओं को आगे बढ़ाना और जिस तरह 51,000 लोगों का 47 स्थानों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है वो भी सौभाग्यशाली है कि उनको नियुक्ति पत्र कोई डाक से नहीं मिल रहा है, कोई पोस्टल स्पीड पोस्ट से नहीं मिल रहा है, उनको नियुक्ति पत्र दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दे रहे हैं और नियुक्ति पत्र पर प्रधानमंत्री की फोटो है। यह सौभाग्य है, जीवन भर के लिए उनके लिए एक एसेट है कि हमको नियुक्ति पत्र देश के प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है।
1: आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से रांची में गुरुदेव आनंद मूर्ति का 105वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
3: परम आराध्य गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्म दिवस 105वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। सुबह से अभी तक जो है हम लोग उनका जन्मदिवस मनाए, अभी हमारा शोभा यात्रा निकला है, उसके बाद से यहाँ पर बहुत तरह के कल्चरल प्रोग्राम होंगे, बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, तब नारायण सेवा होगा, नारायण सेवा के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा।
1: इस मौके पर संस्था के धर्म प्रचार सचिव विजयवर्धन ने बताया कि विश्व के 180 देश में गुरुदेव आनंद मूर्ति के सेवा कार्य और प्रचार प्रसार वर्तमान समय में चल रहे हैं।
4: आनंद मार्ग ग्लोबल संस्था है, ये 180 देशों में फैला हुआ है और इसको यूएनओ के द्वारा भी स्वायत्तता प्राप्त है और ये अपने सेवा क्षेत्र के लिए ही पूरे विश्व में माना जाता है आज गुरुदेव।
1: गौरतलब है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन 1921 में गुरुदेव आनंद मूर्ति का जन्म हुआ था, जिसे संस्था की ओर से आनंद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले में आजकल अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं आप बंगला कार्यक्रम।

बंगला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन सोमवार है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अपने।

0: श्रोता, वृद्धावस्था में अकेलापन दूर करने का सबसे बेहतरीन उपाय अपनी पसंदीदा गतिविधियों में व्यस्त रहना है। इससे न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बल्कि जीवन में एक नया उद्देश्य भी जुड़ जाता है। इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। ऐसा है कि 60 वर्षीय रमेश जी सेवानिवृत्त हुए थे और रिटायरमेंट के बाद अचानक खाली हुए समय ने उन्हें उदास कर दिया था। बच्चे अपनी नौकरियों में व्यस्त थे और पत्नी घर के कामों में। रमेश जी दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते या खिड़की से बाहर देखते रहते। उनका अधिकांश समय निराशा और अकेलेपन में बीतने लगा। एक दिन उनकी पोती स्कूल से घर लौटी और अपना पेंटिंग का प्रोजेक्ट मेज पर रख दी। रमेश जी ने अनमने ढंग से रंगों को देखा और ब्रश उठाकर एक अधूरा चित्र पूरा कर दिया। उस दिन उन्हें महसूस हुआ कि युवावस्था में उनका शौक चित्रकारी करना था, जिसे नौकरी की व्यस्तता के कारण उन्होंने छोड़ दिया था। अगले दिन से रमेश जी ने अपनी पुरानी डायरी और रंग निकाले। वो सुबह उठकर बगीचे में बैठते और फूलों पक्षियों के चित्र बनाते। धीरे धीरे उनकी कला में निखार आने लगा। उन्होंने अपने बनाए चित्रों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। यहाँ तक कि आस पड़ोस के बच्चे भी उनसे चित्रकारी सीखने आने लगे। अब रमेश जी के पास उदास होने का समय ही नहीं था। वो अपनी रुचि में इतने व्यस्त और खुश रहने लगे कि उनका बुढ़ापा जवानी से भी अधिक ऊर्जावान लगने लगा। कहने का मतलब कि उम्र केवल एक संख्या है। यदि हम वृद्धावस्था में अपनी किसी पुरानी रुचि या रचनात्मक कार्य में खुद को व्यस्त रखें, तो बुढ़ापा बोझ नहीं बल्कि जीवन का सबसे खुशनुमा और सार्थक दौर बन सकता है। वैसे वृद्धावस्था में तनाव भी हमें घेरे रखता है, तो अगर हम व्यस्त रहें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें, तो हम आसानी से ये पड़ाव भी पार कर सकते हैं। तो आइए इन सब पर कुछ और जानकारी के लिए मिलते हैं ललन शर्मा जी से। श्रोताओं, वृद्धावस्था में जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप महसूस करेंगे। इसलिए वृद्धावस्था में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, तभी आप एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं और तनाव से दूर रह सकते हैं। तो आइए इन सब बातों पर चर्चा के लिए मिलते हैं श्री ललन शर्मा से। तो ललन जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो ललन जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता और आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हासिल की?
1: मैं मूलतः जमशेदपुर से ही हूँ और जन्म कर्म यहीं का है, कार्य क्षेत्र भी जमशेदपुर। अच्छा। पढ़ाई लिखाई जमशेदपुर में ही हुई है। स्नातक के बाद पीजी के लिए मैं शहर से बाहर मिथिलांचल से मेरी पीजीटी।
0: अच्छा, तो ललन जी, जब आप कॉलेज में थे तब आपने क्या सपने देखे थे अपने करियर को लेकर?
2: स्कूल में जब मैं था उसी समय मेरे मन में देशभक्ति की भावना बहुत थी।
0: हाँ।
2: और मैं फौज में जाना चाहता था।
0: अच्छा।
2: और मुझे फौज में जाने का मौका भी मिला। मैं वायुसेना में एक साल की नौकरी की।
0: अच्छा।
2: पता नहीं अनायास मैंने जॉब छोड़ दी। अच्छा। और फिर मैं जमशेदपुर आकर अपनी पढ़ाई में लग गया और फिर बैचलर डिग्री बीएड करके फिर मैं टीचिंग लाइन में आ गया।
0: अच्छा, तो कार्य क्षेत्र में आपके अनुभव कैसे रहे?
2: टीचिंग लाइन मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने जो विचार और मेरे मन में जो भावनाएं हैं, मैं उसको अच्छी तरह लोगों तक पहुंचा सकता हूं, बच्चों के माध्यम से भी और शाम का फ्री वक्त में भी लोगों से मिल करके उनसे विचारों का आदान प्रदान करके मैं अपनी बातों को और अच्छी बातों को लोगों तक पहुँचा सकूँ, इसीलिए मैं टीचिंग लाइन में आया।
0: अच्छा, बहुत अच्छी सोच है ललन जी आपकी, और ये एक तरह से समाज सेवा भी है
2: जी,
0: आपने
2: जी,
0: जो क्षेत्र चुना है
2: जी, जी।
0: अच्छा ललन जी, जब आप कार्यरत थे तब तो आप काफी व्यस्त रहते होंगे
2: जी, जी।
0: लेकिन अवकाश प्राप्ति के बाद आपका समय कैसे व्यतीत होता है?
2: अभी अवकाश प्राप्त तो पूरी तरह नहीं है मेरा, अभी थोड़ा एक्सटेंशन चल रहा है।
0: अच्छा, अच्छा।
2: लेकिन मन में कुछ कुछ कार्यक्रम बना रखे है, जैसे मैं एक बच्चों के लिए कोचिंग, फ्री कोचिंग के लिए सोच रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम के गरीब बच्चे हैं
0: जी।
2: उसके लिए मैं एक कोचिंग खोलने की सोच रहा हूँ अपने क्षेत्र।
0: अच्छा,
2: में।
0: अच्छा।
2: ताकि मैं खाली समय में, और उनकी सेवा भी हो जाएगी और मेरी व्यस्तता भी बनी रहेगी।
0: अच्छा, और वैसे खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं?
2: खाली समय में मूलतः मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, पढ़ता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ और थोड़ा लिखता हूँ। मैं कहानी, व्यंग और
0: अच्छा।
2: नाटक भी लिखता हूँ और आकाशवाणी से अच्छा। मेरी कई रचनाएं प्रसारित हो चुकी हैं।
0: अरे वाह, तो बहुत अच्छा शौक रखते हैं आप
2: जी।
0: क्योंकि लेखन ऐसा क्षेत्र है
2: जी
0: कि आप जो अपेक्षाएं करते हैं समाज से वो अपनी लेखनी के द्वारा उसे उतार सकते हैं
2: जी। हाँ, लेखनी को चुनने का पीछे कारण यह रहा कि ये मेरी बातें अखबार के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, इसलिए मैं, मेरी कोशिश रहती है कि रचनाएं लिखी जाएं और किसी तरह से छप जाएं और प्रसारित हो जाए।
0: बहुत तो बहुत अच्छा अच्छी बात कही आपने ललन जी, क्योंकि एक लेखक ही है जो समाज को बदल सकता है, दिशा दे सकता
2: जी,
0: है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जो भी आपके मन में बात आती है या आप समाज को जिस तरह से देखना चाहते हैं, जिस तरह से बनाना चाहते हैं, वो आप लिख कर लोगों तक पहुँचा कर और उसमें ये परिवर्तन ला सकते
2: जी,
0: हैं
2: जी।
0: तो बहुत अच्छी सोच है ललन जी आपकी। ऐसा है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा तनाव में चला जाता
2: जी,
0: है
2: जी, जी।
0: जिन व्यक्तियों की सोच थोड़ी सी सकारात्मक नहीं होती है
2: जी,
0: या बहुत सी बातें उनके दिमाग में घर कर जाती है जिस वजह से वो तनाव में चले जाते
2: जी,
0: हैं अपनी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बुजुर्ग जो है वो तनाव में चले जाते हैं?
2: ऐसा है कि जो जो लोग नौकरीशुदा रहे हैं और लगातार काम करते रहे हैं और अपने काम के दौरान जो रिश्तेदारी भूल गए, रिश्तेदारों के बीच रहना, लोगों के बीच उठना बैठना कम हो गया है, वो क्या होता है कि धीरे धीरे समाज से लगभग कट जाते हैं। तो होता क्या, रिटायरमेंट के बाद उनको एकाला, फिर वही एकाकीपन उनके पास आता है, क्योंकि तब तक रिश्तेदार भी सोचते हैं कि अब रिटायर हुआ तो अब मिलने आ रहा है
0: जी।
2: या रिश्तेदारी में बहुत सारे सेवा का काम है, शादी विवाह में जाना, समारोह में जाना, और ये एक बड़ा कारण रहता है कि बुढ़ापे के समय लोगों को तनाव भी होने लगता है कि लोग अपने लोग, अपने रिश्तेदार लोग भी पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि पूरे जीवन काल में तो आए नहीं और अभी रिटायरमेंट के साथ फुर्सत का समय वो निकाल कर आना, उनको भी लगता है कि अपना टाइम पास करने ही आ रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे वो तनाव की तरफ जाएगा ही, जाना ही पड़ता है उसको।
0: और कई बार ऐसा भी होता है ललन जी कि जब परिवार में व्यक्ति रहता है तो अवकाश प्राप्ति के बाद होता ये है कि बच्चे जो है वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, कुछ भी डिसीजन उन्हें लेना रहे, किसी भी काम को करने के लिए वो बुजुर्गों की सलाह नहीं लेते हैं, वो खुद फैसला करते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो कई बार ये बातें भी खटक जाती है बुजुर्गों।
2: नहीं, मैं सभी ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं उस समय निर्णय लेने की क्षमता माँ बाप को दी जाती थी
0: जी।
2: और आज का जो दौर है ये बहुत ही आधुनिक और डिजिटल युग है, इसमें बच्चों को निर्णय लेने की पूरी आजादी देनी चाहिए, क्योंकि उनके आने वाला जो समय है वो मेरे वाले समय से बहुत ही अलग होगा, इसलिए उसको, उसके निर्णय पर आपको छोड़ना ही चाहिए। इससे आपको क्या होगा, ये तो आपका तनाव नहीं रहेगा कि बच्चे को जो मन में आ रहा कर रहा, और आपको गिला नहीं रहेगा कि मेरी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई, बच्चे ने किया, बच्चे का अगर निर्णय गलत या सही होगा तो आपको चिंता नहीं है, चूंकि बच्चे ने निर्णय लिया तो वो अपने निर्णय के साथ चलेगा। तो आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहिए और अपने काम पे रहिए।
0: और ये भी कर सकते हैं ललन जी कि अगर बुजुर्गों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें सलाह देना चाहिए तो वो सलाह जरूर दे, लेकिन ये उम्मीद ना रखे कि उसको वो मानेंगे।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं माना तो भी उनको ये सोच के खुश रहना चाहिए कि चलो हमने अपनी ड्यूटी की, हमने अपना सलाह दिया, अब अगर उनको वो उचित लग रहा है तो वो उसको मानेंगे, नहीं उचित लगा तो उससे बेटर अगर उनको पता है तो वो काम कर सकते हैं।
2: इसमें भी होता है शिखा जी कि बुजुर्गों के सलाह तो लोग लेते हैं, ऐसा मैंने देखा नहीं है कि सलाह देते हैं पेरेंट और युवा जो साथी उनके बाल बच्चे सुनते हैं, लेकिन होता क्या कि उसमें कभी कभी काम की बातें निकल आती हैं
0: जी,
2: तो लोग पेरेंट को ऐसा नहीं कि एकदम से इग्नोर करते हैं,
0: जी,
2: वो
0: बिल्कुल
2: ले लेते हैं सलाह को।
0: लेकिन बुजुर्गों को चाहिए कि वो अपेक्षाएं ना रखें।
2: जी जी बिल्कुल, अगर अपेक्षाएं रखेंगे तो आपकी चिंता बहुत
0: हो।
2: जी जी बहुत,
0: वो जो भी सलाह देना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं वो कहें, लेकिन ये उम्मीद ना रखें कि उसको माना जाएगा।
2: जी जी बिल्कुल,
0: मान लिया गया तो खुश हो जाइए, नहीं माना गया तो दुखी भी मत होइए,
2: दुखी ना हो, आपको दुख होने का तो कोई कारण ही नहीं बनता।
0: और आगे जब भी जरूरत पड़े तो अपनी सलाह जरूर
2: जी जी समय समय पर आपको सलाह देते रहिए, अगर
0: क्योंकि आपके पास ही अनुभव का खजाना
2: जी हाँ, जो आपका अनुभव संसार है वो बहुत आपके बच्चे के अनुभव संसार से बहुत बड़ा है,
0: बहुत बड़ा है।
2: लेकिन क्या गैप ये है कि आप हम जिस काल में थे वो साइकिल युग हुआ करता था, मोटरसाइकिल युग हुआ करता था, और आज बच्चे सीधे आपको ट्रैवल करने के लिए हवाई जहाज से जाना पसंद करें। तो बुजुर्गों को लगता थोड़ा कि ज्यादा पैसा खर्चा हो जा रहा है, ऐसे बहुत सारे तो फैक्टर भी आ जाते हैं।
0: अच्छा, और ललन जी अब समय की सीमा है लेकिन फिर भी चलते चलते हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, और ये इस अवस्था में भी लागू होता है कि शैतान

0: छोटे मोटी खरीदारी करते रहें, अपने लिए भी और अपने लिए इंतजार ना करें कि भोजन आएगा तभी खाएंगे। आपको अगर लगे कि मुझे कुछ ऐसा खाने का पसंद है तो संकोच ना करें, आप कहीं से व्यवस्था करके जरूर। अच्छा। अपनी इच्छा को दबाए नहीं, उससे तनाव कम रहेगा।
1: खुद ही किचन में चले जाए,
0: किचन में जा ना तो अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से कर ले और खाते पीते रहे और हंसते रहे।
1: जी, हंसना बहुत जरूरी है, ये सबके ऊपर लागू होता है, क्योंकि जितना आप हंसेंगे खुश रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे।
0: जी, बिल्कुल
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई ललन जी। समय की सीमा है इसलिए हमें बातचीत यहीं रोकनी पड़ेगी।
0: जी।
1: लेकिन आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि जो बुजुर्ग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो जरूर आपकी बातों से सहमत होंगे कि हमेशा हंसते रहें और खुशहाल रहें,
0: खुश रहें, मस्त रहें,
1: और यही एक कारण बन सकता है आपके ऊर्जावान रहने का।
0: जी
1: ललन जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हमारे अपने का ये अंक आज यहीं तक। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। तो फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए शिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: कार्यक्रम हमारे अपने अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
5: ज्ञान विज्ञान,
6: इतिहास के पन्नों से,
5: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
4: मौसम का मिजाज,
5: अपने शहर की खबरें,
6: बातों मुलाकातों के साथ
4: सुरीला मनोरंजन
5: और भी बहुत कुछ।
4: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
6: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
4: नमस्कार जमशेदपुर।
2: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और चलिए चलते हैं गीतों के सुरीले सफर पर।

विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। जी हाँ, इसी फिल्म का ये गीत आपने सुना। आवाजें थी वरुण जैन और साथियों की, बोल लिखे थे प्रिया सरैया ने और संगीत सचिन जिगर ने बनाई थी।

0: पिंटू की पप्पी। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, श्रेया घोषाल, जावेद अली और साथियों की आवाजें थी। बोल लिखे थे सोनल प्रधान ने और संगीत अनुष्का दीक्षित ने बनाई थी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक

0: यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: संतोष नारायणन और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना रिट्रो फिल्म का ये गीत। बोल लिखे थे विवेक ने और संगीत संतोष नारायणन ने बनाई थी।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

0: फिल्म आर्टिकल 15 का ये गीत आपने सुना। आवाजें थी यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा की। गीत के बोल रश्मि विराग ने लिखे थे और संगीत पीयूष शंकर ने बनाई थी।
1: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

राघव चैतन्य और साथियों की आवाजों में आपने सुना ये गीत फिल्म मेट्रो इन दिनों से। बोल लिखे थे अनुराग शर्मा ने और संगीत प्रीतम ने बनाई थी।

फिल्म 1.5 बीघा जमीन का ये रचना आपने सुनी। आवाज़ थी स्टीवन बेन की। बोल की पुनर्रचना मनोज मंतशिर ने की थी, जबकि संगीत का रिक्रिएशन था रोचक कोहली का।

0: और श्रोताओं, फिल्म अमावस के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। रात के 8:45 होने ही वाले कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ. एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने

0: फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: High international crude prices and
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
3: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed.
7: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
6: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
8: अगेंस्ट द असेसमेंट ऑफ
4: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
8: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर

0: दार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी एक रिपोर्ट।
1: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor, late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
3: Padma Vibhushan, Shri Dharmendra Singh Deol, Marnoprant, Kala Film Abhinay, Unki Patni, Shrimati Hema Malini.
2: The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, यूनियन मिनिस्टर

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7, 2371-7106 और 2331-4444। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं।

0: सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट टेलरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था। उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की ओर बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70.3। इसको सबको नजर रखते हुए, जैसे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीजों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स किए हैं उन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ढूंढ सकते हैं।
0: ऐसे जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया, और सीनियर सिटीजन के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स? ये है नैना का सवाल मुंबई से।
1: जी थैंक यू नैना जी। जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे मुंबई में या महाराष्ट्र में, जैसे आपने मुझसे कहा जी, तो वहाँ पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स हैं वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती हैं, उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर।
0: तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि ये है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
1: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा
0: जी,
1: कि हमारे जेरियाट्रिक केयर गिवर का वहाँ पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा
0: जी,
1: इसके अलावा वहाँ पे कोई जानकारी नहीं होगी।
0: और एक और सवाल आया है हमारा,
1: इसका पार्ट टू भी,
0: ये डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस के लिए, क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
1: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
0: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
1: जी।
0: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
1: जी।
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो। कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है। कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब है, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लैट्रिन बाथरूम बिठाने के लिए भी
0: जी मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी। जी धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे कि जैसे जो कई सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
1: जी इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना ज़रूरत नहीं है।
0: जी थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है?
1: जी थैंक यू कमलकांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567, तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
0: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
1: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळ सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल। अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्य वयोश्री केंद्र है, वहाँ पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देके परिचय पत्र देके ले सकते हैं। तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है
0: जी। और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं। उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा।
1: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूँगी। जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, ज्योग्राफिकल लोकेशन नाम पता। दूसरा है एल्डर लाइन, जैसे मैंने कहा 14567 उसका 112 और 108 के साथ। तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में। चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है।

0: इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, एमओयू हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी।
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी?
0: जी, इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी,
1: ताकि लोगों को आसानी हो।
0: जी, जो संजीवनी
1: संजय सूरी जी। और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
2: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। इसमें मैडम ने भी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुँच बना सकते हैं। मेरा इसमें और ऐड कर रहा था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक, जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चल के नहीं सकते हैं, उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो, जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके। जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है। ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुँच बना सकते हैं। जी,
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी कि दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो।
0: जी अमित उपाध्याय जी, सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है। तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुँचे।
1: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मुनाली जी, अगर देखूं, जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है?
0: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूंगी। हमारा जो 14567 है, इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफ़ी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होके चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
0: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज्यादा लोगों तक अगर हम हो तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
0: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए हैं आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैकएंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से, कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके एप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन हैं। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़।

0: जी।
1: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार श्रीपद
1: नमस्कार
0: जी, स्वागत है
1: करण
0: आपका कार्यक्रम में।
1: जी। धन्यवाद। मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ
0: जी।
1: और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है, मतलब हम लोगों को?
0: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
2: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से?
0: जी, अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी, हाँ,
2: अच्छा,
0: उन्होंने बताया वृद्धाश्रम
2: वृद्धाश्रम से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है, इसमें तो हर जानकारी है। इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहां से ले सकते हैं।
0: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो? क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन्स इनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
2: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने भी प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन। उसके तहत ना ही, जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉग करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियाँ
0: जी। तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4567-14567, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
3: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।
3: आप सभी लोगों को आगामी पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
0: जी धन्यवाद
3: जी। और हाँ जी, मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
2: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 1-4567 ये जो हेल्पलाइन है, इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है, इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहां के वहां पहुंचाई जाएगी।
0: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं, 1-4567 और जो कनेक्टेड है 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
2: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, अभी पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
0: जी
2: प्रेस के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुँचने की हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं।
0: जी हाँ, जैसे हमने जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ जब भुगतान करना है, तो अगर अगर हम जाएं दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है, तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
2: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से, सासाराम से, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर है, तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी।
0: जी, दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
4: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
4: मैं राजकुमारी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
0: जी।
4: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
0: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
2: नमस्कार मैम। जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है, जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोशी कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112, इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है, उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
0: जी, तो इसमें जैसे अपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की, तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
2: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं, वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं, पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं। हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं, या जो ट्रेनिंग करवानी है, या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
0: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
5: जी नमस्कार।
0: आपका सवाल?
5: हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं।
0: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं, ये प्रयास है पहुंचे?
2: रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की जरूरत नहीं है। आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
0: अगर उन्हें का स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
2: 14567 में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
0: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने। मध्य प्रदेश
2: मंत्रालय ने
0: जी। राजेश नेमा जी।
6: जी
0: राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
6: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
0: जी,
6: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है, उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं, वो परिवार से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
0: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है, तो उस स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है मोनाली जी?
2: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है।

0: ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए। तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
0: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे। तो इसके जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से ऐप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पर जोड़ते जाएं।
1: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की इस बारे में धन्यवाद। और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।
1: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पब्लिक स्पीक अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर रात के 10 बजे। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये पहला गीत आपने सुना अनीता फिल्म से। आवाज मुकेश की थी, बोल लिखे थे आरजू लखनवी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई थी। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनपढ़ का ये गीत। गीत के बोल राजा मेहंदी अली खान ने लिखे हैं और संगीत है मदन मोहन का।

फिल्म अनपढ़ के इस गीत के बाद आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म तीन देवियां का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज है। बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत एस डी बर्मन ने बनाई है।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं होटल फिल्म का गीत। मनहर उदास और आशा भोसले की आवाजें हैं, बोल हैं इंदिवर के और संगीत उषा खन्ना ने बनाई है।

फिल्म ज्वेल थीफ के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का आखिरी नगमा। इसे हमने चुना है फिल्म एक कली मुस्काई से। आवाज लता मंगेशकर की है, बोल है राजेंद्र कृष्ण के और संगीत मदन मोहन ने बनाई है।

एक कली मुस्काई, इसे फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज थी। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। रात के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन, राग है चंद्रकौंस।

शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुन रहे थे पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन, राग था चंद्रकांत। यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक